सोई तुझे पछाण है, तेरिया भगतां कौ बलिहारा, थान सुहावा सदा प्रभ तेरा, रंग तेरे अपारा रहाओ, तेरी सेवा तुझते होवे और ना दूजा करता, भगत तेरा सोई तुद पावे, जिसनो तू रंग तरता, तू वडदाता तू वडदाना और नहीं को दूजा, तू समर्थ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा, तेरा महला गोचर मेरे प्यारे, बिखम तेरा है भाणा, कहो नानक टह पया द्वारा, रख ले वो मुकद्या जाना, बसंत हिंडोल महला पंजवां, मूल ना बुझै अपना सूजै, भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभ ते होवै ए बिचारी हर जनी, नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी, आवरियो पाओ ना को सूजै, नानक तरिए गुरबचनी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा, साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो रहाओ, एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग त्योहार है कछु ना चल है, ताहे कहां लपटानो, उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण, एक पुरख भगवानो, बसंत महला।

जोगी जंगम अर सन्यासो सभी पर डारिये फास। जेह जे अर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए बसंत महला नावा। माई मैं तन पायो हर नाम मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान लोभ मोए परस ना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया तृष्णा सगल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निद सो गोविंद गुण गावै कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहां बिसार्यो राम नाम तन बिनसै जम स्यों परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार धन दारा संपत ग्रह कै संग ना चालै समझ लेहे। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग बसंत महला नावा। कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ियो नाहन अजो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्जर भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुध बुदा हेर मात्र बूंद ते तार चक फेर। सर्ब जोत नामे की चेर सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रताओ चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए जो किश कीनस प्रभर जाए। पै मान निरपो मेरी माए कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाचो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए अत लुब्ध लुबानो बिखुमाए। नय असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवरतार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस काम हार कड़बंधन बांध्यो सी समार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले ना जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख त
ਧਰ ਤਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ, ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ, ਸਦਾ ਮੁਕਤ

सब हुक्मो वरदै हुक्म समाए, दुख सुख सब ते सिर जाए। तू आ भुल ना भूलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे। तू मोटो ठाकर शब्द माहे, मन नानक मान्या सच सलाहे। बसंत महला पहला, दर्शन की प्यास जिस नर होए, एक तरह चै पर हर दोए। दूर दर्द मथे अमृत खाए, गुरमुख बूझै एक समाए। तेरे दर्शन को केती बिललाए, विरला को चीनस गुर शब्द मिलाए। रहाओ बेद वखाण कह एक कही है, ओह बेअंत अंत कह लही है। एको करता जिन जा किया, बाज कला तर गगन तरिया। एको ज्ञान ध्यान तुन बाणी, एक निराल मवा कथ कहानी। एको शब्द सच्चा निशान, पूरे गुर ते जाने जान। एको धर्म दृढ़ सच कोई, गुरमत पूरा जुजुग सोई। अनहद राता एक लिवतार, ओ गुरमुख पावे लख्या पार।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम ना हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साज ना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा ना है, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्रिपौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा टोवा। अपने चरण जपायन, विचदै खड़ोवा। रोग सोग सा मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रहै, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याय न सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्याकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाट कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख देहो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडै मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਦੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

माया पागे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैस हो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दिनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल ब्रह्म काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही अरै बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।

जन नानक कहो कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीशर कृपा पई, मैं अन दिनो सद सदा, मैं अन दिनो सद सद सदा, हर जपया हर नाओ, सारंग महला चौथा, जप मन निरपो सत सत सदा सत, निर्वैरय काल मूर्त अजूनी संभो, मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ, हर दर्शन कहो हर दर्शन कहो, कोट कोट तती सिद्ध जति जोगी, तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी, तिन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिन की नानक हर पै सवारी, सारंग महला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निधान, सब सृष्टि का प्रभो, मेरे मन हर बोल हर पुरख अविनाशी रहाओ, हर का नाम अमृत हर हर, हर का नाम अमृत हर हर, हरे सो पीवे जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले जे सदगुरु, सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेवै सद सदा मेरा हर हरे, तिनका सब दुख भरम पौ जासी, जन नानक नाम लय ता जीवै, ज्यो चात्रक जल पीए त्रिपतासी, सारंग महला चौथा, जप मानो श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो पैया सद राम, राम राम रव रहया सरबगे रहाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सबत जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम रहाए, सो जानो राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संताओ, जो भगत जना की पत राखे विच कल जुगे अगे, जन नानक का अंग किया मेरा राम राय, दुश्मन दुख गए सब भगे, सारंग महला पंजवा, चौप दे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर मूर्त कहो बल जाओ, अंतर प्यास चात्रक ज्यो जल की, सफल दर्शन कद पाओ रहाओ, अनाथा को नाथ सर्व प्रतपालक, भगत वच्छल हर नाओ, जां को कोई ना रखे प्राणी, तिस तू दे असराओ, नितरिया तार निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दह दिस जाओ तहां तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते का, तेरी गत मित कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है, सब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग साध स्यों गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है गुरमत, हर देहो दर्शमन चाओ, सारंग महला पंजवा, हर जियो अंतर जामी जान, करत बुराई मानख ते छिपाई, साखी पूत पवान रहाओ, बैसनो नाम करत खटकर्मा, अंतर लोभ जूठान, संत सभा की निंदा करते डूबे सब अज्ञान, करह सोम पाक हिरै पर दरबा, अंतर झूठ गुमान, शास्त्र वेद की विद नहीं जाने, व्यापे मन कै मान, संध्या काल करे सब वर्ता, ज्यो सफरी दमफान, प्रभु पलाए उजड़ पाए, निहफल सब करमान, सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़िया, जिस करी कृपा भगवान, उन सतगुर से परम पद पाया, उदरिया सगल विस्वान, क्या हम कथे किश कथ नहीं जाने, प्रभ पावे तवे बुलान, साध संगत की तूर एक मांगो, जन नानक पयो सरान, सारंग महला पंजवा, अब मोरो नचनो रहो, लाल रंगीला सहजे पायो, सतगुर बचन लहो रहाओ, कुवार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिया बचन उपहास कहो, ज्यो सुरजन गृह पीतर आयो, तब मुख काज लज्जो, ज्यो कन को कोठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो, जब ते सुध पय है बारह, तब ते थान

नाम को सुखसार आन काम बेकार माया सगल दिशार रहाओ ग्रह अंधकूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी प्रमत हार्यो प्रमत बारंबार पतत पावन भगत वछलो दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार सारंग महला पंजवा विराजत राम को प्रताप आद ब्याज पाद सब नासी बिनसे तीन ताप रहाओ तृष्णा बुझी पूर्ण सब आसा चूके सोख संताप गुण गावत्या चौतव नासी मंतन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत सर साधु कै संखाप भगत मच्छर पै कटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतर नाम बिन संसार तृप्त न होवत कुकरी आसा इत लागो बिख्या शार रहाओ पाए ठगौरी आप लायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख भंजन तेरिया संत की रावार नानक दास दर्श प्रभ जाचै मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचाया भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कथों पाई पूरा सतगुर सहजना पेटिया सख्त आवै जाई राख ले हो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम्या पार नानक दास तेरी सरनाई पवजल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण कौ राम के गुणबाद साध संग त्याई है परमेसर अमृत जा के स्वाद रहाओ सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज अनद अनहद तुन बाणी बहुर न भय बेखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवत अमयो मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैनी थकत नाही कतै नाही छोट रहाओ महाबज्र बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर गईया खिनह पीतर जमै ग्रासे चोट पस परेत उष्ट गर्दब अनक जोनी लेट पज साध संग गोबिंद नानक कश ना लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावै बिसु के गटाक नैन सरवण शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रियान उधर ले पोखै माया गईया हाट किल बिख करत करत पछतावै कब न सकै शांट निंदक जमदूती आए संघार्यो देवै मूंड उपर मटाक नानक अपन कटारी आपस कौ लाई मन अपना कीनो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जनका राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाओ उसका कहया कोई ना सुनई कहीं ना बैसन पावै इहा दुखिया गै नरक पुंचै बहु जोनी परमावै प्रगट पया खंडी ब्रह्मंडी कीता अपना पाया नानक सरन निरपव करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा तृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कथो बातै अंत प्रतिहार रहाओ सांत सुख न सहज उपजै एह इस व्यवहार आप पर का कछ न जानै काम क्रोधै जार संसार सागर दुख व्यापियो दास लेवो तार चरण कमल सरनाए नानक सच सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तै कमन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जंदीन रहाओ खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत खीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद बिकार बादा अनक जोन परमीन गोबिंद बिसरे कवन दुख गनिय सुख नानक हर पद चीन सारंग महला पंजवा मायरी चरना उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहे।

लोहा पारस भेटी है कंचन होए आया, नानक सतगुर मिलया नाउ पाई है, मिल नाम ते आया, जिन कह पोतै पुन है तिनी दर्शन पाया। सलोक महला पहला, त्रिगत न का जीविया जे लिख लिख वेचे नाउ, खेती जिनकी उजड़े खलवाड़े क्या था, ओ सच्चे समय बाहर है अगे लह ना दाद, अकल एह ना आखी है अकल कवाई है बाद।

जैसा करे कहावे तैसा ऐसी बनी जरूरत, होवे लिंग चिंग न होवे ऐसी कही है सूरत। जो उस इच्छे सो फल पाए ता नानक कही है मूर्त पौड़ी। सतगुर अमृत बिरख है अमृत रस फलिया, जिस प्राप्त सोल है गुरसब्दी मिलिया। सतगुर कह पाणे जो चले हर सेती रलिया, जम काल जोहे न सकई कर चानन बलिया। नानक बख्स में लायान फिर गर्भ ना गलिया, श्लोक महला पहला। सच वर्त संतोख तीर्थ ज्ञान ध्यान इशनान, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान। जुगत धोती सुरत चौका, तिलक करनी होए पाओ पाओ जुन नानका, विरला ता कोई कोए। महला तीजा नौमी नेम सच जे करे, काम क्रोध तृष्णा उचरे। दसवीं दसे द्वार जे ठाके, एकादशी एक कर जाने। द्वादशी पंच वसगत कर राखे, तौ नानक मन माने। ऐसा वर्त रही जय पांडे, होर बहुत सिख क्या दीजे। पौड़ी भुगत राजे रंग राय, संचय विखमाया कर कर हेत वधाए दे पर दर्प चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया, वेखद्या ही माया तुहे गई पछता पछताया। जम दर बदे मारी है नानक हर पाया, श्लोक महला पहला। ज्ञान में हुना गावे गीत, भुखे मुला करे मसीत। मखटू होए कह कन पढ़ाए, फकर करे होर जात गवाए। गुरपीर सदाए मंगन जाए, ता कह मूल न लगी है पाए। काल खाए किश हथों दे, नानक राहो पछाणे से। महला पहला। मनो जे अंधे कूप, कहया बिरद ना जाननी। मन अंधे उंधे कवल, दिसन खरे करूप। एक कह जान कहया बुजन, ते नरसुर स्वरूप। एक ना नाद ना बेद ना गी रस, रस कस ना जान अंत। एक ना शुद्ध ना बुद्ध ना अकल सार, अखर का प्यो ना लहंत। नानक से नर असल खार, जे बिन गुण गर्भ करंत। पौड़ी गुरमुख सब पवित है, तन संपै माया। हर अर्थ जो खर्च दे, देन दे सुख पाया। जो हर नाम ते आए दे, तिन तोट ना आया। गुरमुखा नदरी आमदा, माया सुट पाया। नानक भगता होर चेतना आवई, हर नाम समाया। श्लोक महला चौथा। सतगुर सेवन सेवट भागी, सच्चा शब्द जिन्ना एक लिव लागी। ग्रह कुटाम मैं सहज समाधि, नानक नाम रते से सच्चे बैरागी। महला चौथा। गणत सेवना हो वई, कीता थाए ना पाए। शब्द साधना आयो, सच ना लगो पाओ। सतगुर प्यारा ना लगे मन ठिया वह जाए। जे एक विख अगाहां भरे, ता दस विखां पिछाहां जाए। सतगुर की सेवा चाकरी, जे चले सतगुर पाए। आप गवाए सतगुरु नो मिले, सहजे रह समाए। नानक तिन्ना नाम ना विसरै, सच्चे मेल मिलाए। पौड़ी खान मलूक कहाए, दे को रहन ना पाई। गढ़ मंदिर गच गिरिया, किछ साथ ना जाई। सोयन साखत पौन वेग, त्रिग त्रिग चतराई। छति अमृत प्रकार करै बो मैल वधाई। नानक जो देवै तिसे ना जाननी।

बरसै मेघ सखी कर पा होने आए। मोहे दीन कृपा निध ठाकर नवनिध नाम समाए रहाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए बहु व्यंजन मिष्टाए। करी पागसाल सोच पवित्रा हुण लावो भोग हर राए। दुष्ट बिदारे साजन रहसे एह मंदर कर अपनाए। जौ ग्रह लाल रंगी ओ आया तौ मैं सब सुख पाए। संत सभा उट गुर पूरे तुर मस्तक लेख लिखाए। जन नानक कंत रंगीला पाया फिर दुख ना लागे आए। मलार महला पंजवा खीरा दार बारक जब होता बिन खीरा रहन ना जाई। सार संभाल माता मुख नीरै तबो तृप्त अगाई। हम बारक पिता प्रभदाता भूलै बारक अनक लख बरिया। अनठौर नाही जय जाता रहाओ। चंचल मत बारक बपरे की सर्प अगन कर मेलै। माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सही तब खेलै। जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी। नवनिध नाम निदान ग्रह तेरा मन बांछै सो लैसी। पिता कृपाल आग्या हे दीनी बारक मुख मांगै सो देना। नानक बारक दर्श प्रभ चाहै मोहे हृदय बसै नित चरना। मलार महला पंजवा सगल विधि जो रिया हर करया तजो सगला देसा। कार्य सगल अरंभ्यो घर का ठाकर का पारोसा। सुनिया बाजै बाज सुहावी भोर भया मैं प्रेम मुख पेखे। गृह मंगल सोहलावी रहाओ। मनुआ लाए सवारे थाना पूछो संतां जाए। खोज खोज मैं पाहुन मिलियो भगत करो ने उपाए। जब प्रे आए बसे गृह आसन तब हम मंगल गाया। मीत सजन मेरे पए सुहेले प्रभ पूरा गुरु मिलाया। सखी सहेली पए आनंदा गुर कार्य हमरे पूरे। कहो नानक वर मिलिया सुखदाता छोड़ न जाई दूरे। मलार महला पंजवा राज ते कीट कीट ते सुरपत।

ठग तन मीर तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारे रहाओ। देव कुल दैत कुल जख किन्नर नर सागर उतरे पारे जो जो भजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे। काम क्रोध महाबिख्या रस इनते पय निरारे दीन दयाल जपै करना मैं नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट नाम रास सांझी कर जन स्यो जाओ न जम कै काट रहाओ। तार अनुग्रहो पार ब्रह्म राखे ब्रह्म के खुले कपाट बेसुमार साहो प्रभ पाया लाह चरण निदखाट। शरण गही अचत बनासी किल विख काढ़े है शांट कल कलेस मिटे दास नानक बहुर न जोनी माट। मलार महला पंजवा बहुबिद माया मोहे हैरान कोट मदे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो रहाओ। इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानो लोग दुराए करत ठगियाई होतो संग न जानो। मृग पंखी मीन दीन नीच ए संकट फिर आनो कहो नानक पाहन प्रवतारो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मोए बिख खाई री माई जिसके जी तिन ही रख लीने मेरे प्रभ को कृपा आई रहाओ। अंतर जामी सब मैं वरतै तापो कैसा पाई संग सहाई छोट ना जाई प्रभ दी सह सबनी ठाई। अनाथा नाथ दीन दुख पंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जी वै दास तेरे नानक प्रभ शरणाई। मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवीजै दर्स प्यास मेरो मन मोहयो हर पंख लगाए मिलीजै रहाओ। खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करीजै तार अनुग्रहो स्वामी मेरे नाम हरस पीजै। त्राहे त्राहे कर सरनी आए जल तो कृपा कीजै कर गै ले हो दास अपने कहो नानक अपनों की जय। मलार महला पंज

तन सुख वसै आए रोग गवाए अपना ता नानक वैद सदाए। पौड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश देव उपाया ब्रह्मे दिते वेद पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया दैता मारे ताए हुक्म सुबाया। ईस महेसर सेव तिन्नी अंतना पाया सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदै लाए आप छपाया धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया श्लोक महला दूजा। सामने आया हे सखी कंतै चित करे हो नानक चूर मरै दोहागणी जिन्हां वरी लागा ने हो महला दूजा। सामने आया हे सखी जल हर बरसन हार नानक सुख सवन सोहागणी जिन सह नाल प्यार। पौड़ी आपे छिंज पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़थू पाए गुरमुख मचिया। मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप पिड़ै मारे आप आप कार्ज रचिया। सबना खसम एक है गुरमुख जानिया हुक्मी लिखै सिरलेख। विण कलम मसवाणी है सतसंगत में लाप जिथे हर गुण सदा वखाणी है। नानक सच्चा शब्द सलाहे सच पछाणी है श्लोक।

सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे, पांच सह दाना खाए, डक्के फूके केहे उड़ावे, साहे गए पछताए। अंधी फूक मुई देवानी, खस मिट्टी फिर पानी, अद गुल्ला चिड़ी का चुगन, गैन चढ़ी बिल्लाए। खस में पावे ओहा चंगी, जे करे खुदाए खुदाए। सकता सी हो मारे सह मेरे आं, सब पिछे पै खाए, ओहे सताना कुरे न मावे, सह गया पछताए। अंधा किसनो बुक सुनावे, खसमे मूल न पावे, अग स्यों प्रीत करे अक तिड्डा, अग डाली बै खाए। खसमे पावे ओहो चंगा, जे करे खुदाए खुदाए। नानक दुनिया चार दिहाड़े, सुख कीते दुख होई, गल्लां वाले हैन करेरे, छड़ न सके कोई। मक्खी मिठे मरना, जिन तू रखे तिन नेड़ ना आवे, तिन पौ सागर तरना। पौड़ी अगमा गोचर तू धनी, सच्चा लख्या पार, तू दाता संमंगते को देवनहार। जिनी सेव्या तिनी सुख पाया, गुरमति विचार, इकना नो तुद एवै भावदा, माया नाल प्यार। गुर कै शब्द पसलाही है, अंतर प्रेम प्यार, विण प्रीति भगत न हो वई, विण सतगुर न लगे प्यार। तू प्रभ सब तुद सेवंदे, इक ढाडी करे पुकार, देहे दान संतोखिया, सच्चा नाम मिले आधार। सलोक महला पहला, राती काल कटै दिन काल, छिजै काया होए पराल। वर्तन वर्तया सर्ब जंजाल, पुल्या चुक गया तबताल। अंधा चख चख पया चेर, पिछे रोवे लियावे फेर। बिन बूझे के सूझे नाही, मोया रोहे रोंदे मर जाही। नानक खसमे वै भावे, सही मुए जिन चित ना आवे। महला पहला, मुआ प्यार प्रीत मुई, मुआ वैरवादी वन गया रूप विनसिया। दुखी देह रली, कितों आया कह गया, केहो ना सीओ केहो सी, मनमुख गल्लां गोईया, कीता चौरली। नानक सच्चे नाम बिन, सिर खुर पत पाटी पौड़ी। अमृत नाम सदा सुखदाता, अंते हुए सखाई। बाज गुरु जगत बौराना, नामै सार ना पाई। सतगुर सेवै से प्रवान, जिन ज्योति ज्योत मिलाई। सो साहेब सो सेवक तेहा, जिस भाणा मन वसाई। आपणे भाणे कहो किन सुख पाया, अंधा अंध कमाई। बिखिया कदे ही रजै नाही, मूर्ख भुख ना जाई। दूजै सब को लग विगुता, बिन सतगुर बूझ ना पाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए, जिसनो कृपा करे रजाई। सलोक महला पहला, सर्म धर्म दोए नानका, जे तन पल्लै पाए, सो तन मित्र ना कांडियै। जित सिर चोटां खाए, जिनकै पल्लै धन वसै, तिनका नौ फकीर। जिनकै हृदय तू वसै, ते नर गुणी गहीर। महला पहला, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए ता लगे दुख। नानक सच्चे नाम बिन, किसे न लथी भुख। रूपी भुख न उतरै, जा देखा ता भुख। जे तेरा शरीर के, ते लगे दुख। महला पहला, अंधी कमी अंध मन, मन अंध तर अंध। चिकड़ लाया क्या थी है, जा टुटै पत्थर बंद। बंद टुटा बेड़ी नहीं, ना तुलहा ना हाथ। नानक सच्चे नामिण, केते डुबे साथ। महला पहला, लख मन सोयना, लख मन रूपा, लख साहा सिर शाह, लख लश्कर लख वाजे ने जे, लखी कोड़ी पातशाह।

काल। हमरे हर प्राण सखा स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे, हरे राम नाम तन माल। जाको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत। हौ बलबले हौ बलबले, जन नानक हर जप पही, निहाल निहाल निहाल। कानड़ा महला चौथा, हर गुण गावो जगदीश, एका जी कीचे लख बीस। जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कृपीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जपो जगदीश। तुमरे जन राम जपे ते उत्तम, तिन कहो हाँ कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड ऊचे, सो करै जे तुद पावीस। जन नानक अमृत पिया गुरमती, तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा, पज राम मन राम, जिस रूप ना रेख वडाम। सतसंगत मिल पज राम, बढ़ हो पाग मथाम रहाओ। जित ग्रह मंदिर हर होत जास, तित कर आनंदो आनंद। पज राम राम राम, राम नाम गुण गावो हर प्रीतम। उपदेश गुरु गुर सतगुरा, सुख होत हर हरे हर हरे। हरे पज राम राम राम, सब श्रेष्ठ तार हर तुम कृपाल करता। सब तू तू तू राम राम राम, जन नानको शरणागति देहो गुरमति। पज राम राम राम, कानड़ा महला चौथा। सतगुर चट पग चाट, जित मिल हर पादर बाट। पज हर रस रस हर गाट, हर हो लिखे लिलाट रहाओ। खट कर्म क्रिया कर बहु बहु विस्थार, सिद्ध साधक जोगिया कर जट जटा जट जाट। कर पेख ना पाईऐ, हर ब्रह्म जोग हर पाईऐ। सतसंगति उपदेश गुरु गुर संत जना, गुर खोल खोल कपाट। तू अपरंपर स्वामी आता गाहा, तू भरपुर रया जल थले। हर एक एको एक एक है हर थाट, तू जाने सब विद बूझै आपे। जन नानक के प्रभ कट कटे कट कटे, कट हर काट। कानड़ा महला चौथा। जप मन गोविंद माधो, हर हर आगा दो। मत गुरमत हर प्रभ लादो, तुर हो लिखे लिला दो रहाओ। बिख माया संच बहु चितै बिकार, सुख पाइये हर पज संत संत संग दी। मिल सतगुरु गुर साधो, ज्यो शोहे पारस मनूर पहे कंचन। त्यों पतत जन मिल संगति, सुध होवत गुरमति सुधादो। ज्यो काष्ट संग लोहा बहुतरता, त्यों पापी संग तरे। साध साध संगति गुर सतगुरु गुर साधो, चार बरन चार आश्रम है। कोई मिले गुरु गुरु नानक, सो आप तरह कुर सगल तरा दो। कानड़ा महला चौथा। हर जस गावो भगवान, जस गावत पाप लहान। मत गुरमत सुन जस कान, हर हो कृपान रहाओ। तेरे जन त्यावै एक मन एक चित, ते साधु सुख पावै। पज हर हर नाम निधान, उस्त करह प्रभ तेरिया। मिल साधु साध जना गुर सतगुरु भगवान। जिनके हृदय तू स्वामी, ते सुख फल पावै। ते तरे पव सिंध, ते भगत हर जान। तिन सेवा हम लाए हरे हम लाए हरे। जन नानक के हर

स्वामी ने रो पेखत सुनत सबन कह संगे थोरे काज ब्रो कह फेरो रहाओ नाम बिना जेतो लपटायो कछु नहीं नाही कछ तेरो आगे दृष्ट आवत सब प्रगट इहा मोहयो परम अंधेरो अटक्यो सुत बनता संग माया देवन हार दा तार बसेरो कहो नानक एक है पारो सौ बंधन काटन हार गुरमेरो कानड़ा महला पंजवा बिखे दल संतन तुमरे गाहयो तुमरी टेक भरोसा ठा करो शरण तुम्हारी आयो रहाओ जन्म जन्म के महाप्राहित दर्शन पेट मिटाहयो पयो प्रगास अन दुजियारा सह समा समाहयो कौन कहे तुम ते कछ नाही तुम समर्थ अथाहयो कृपा निधान रंग रूप रस नाम नानक लै लाहयो कानड़ा महला पंजवा बूढ़त प्राणी हर जप धीरे बिन सह मोह परम दुख पीरे रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना जत कत पेखो तुमरी सरना संत प्रसाद हर के गुण गाया गुर भेड़त नानक सुख पाया कानड़ा महला पंजवा सिमरत नाम मन सुख पाई है साज जना मिल हर जस गाई है रहाओ कर कृपा प्रभृदय बसेरो चरण संदर के माथा मेरो पार ब्रह्म को सिमरो मना गुरमुख नानक हर जा सुना कानड़ा महला पंजवा मेरे मन प्रीत चरण प्रसन रसना हर हर भोजन तृप्तानी अखियन को संतोख प्रभ दर्शन रहाओ करणन पूर रहो जस प्रीतम कल मल दोग सगल मल हरसन पावन तहावन स्वामी सुख पंथा अंग संग काया संत सरसन शरण गही पूर्ण अबनासी आनो पाव थकत नहीं करसन कर गए लिए नानक जने अपने अंध कोर सागर नहीं मरसन कानड़ा महला पंजवा कोह कत कपट खपट खल गरजत मरजत मीच अनक बरिया रहाओ अहु मत अन रात कुमित हित प्रीतम पेखत भ्रम लाग गरिया अनित व्यवहार आचार विदहीनत मम मद मात कोप जरिया करण कृपाल गोपाल दीन बंद नानक उदर सरन परिया कानड़ा महला पंजवा जी प्राण मान दाता हर बिसरते ही हान रहाओ गोबिंद त्याग आन लागे अमृतो डार भूम पागे बिखेरा स्यो आसक्त मूड़े काहे सुखमान काम क्रोध लो व्याप्यो जन्म ही की खान पतत पावन शरण आयो उधर नानक जान कानड़ा महला पंजवा अवलोको राम को मुखार बिंद खोयत खोयत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज तन परवार मेरा सर्ब सो गोबिंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद। कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज हो नाम आराध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाओ अनक पूजा मैं बहुविध खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की यह पुत्री जोरी क्या है कर्म करा कमास प्रभा पकर जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट में कोई न सूजे एक हर की ओट में आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हाँ बल बल सत बल जास कानड़ा महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगते उदारण नाम प्रे तेरे नवनिद नाम निदान हर के रह हर रंग रंग रंग अनूपे रह काहे रे मन मोहे मगने रह नैनो देख सा दरसे रह सो पावे जिस लिखत ले रह रहाओ सेवा सेवो सेवो साध संत चरने रह बांचो तूर पवित्र करे रह अठ सठ मज्जन मैल कटे रह सास सास ते आवो मुख नहीं मोर
किछ संग ना चाल लाख करोर है, प्रभ जी को नाम अंत पकरोर है, मनसा

तुम जानो हम बिरथे, कोई मार्ग पंथ बतावे प्रभ का, कहो तिन कहो क्या दिन थे, सब तन मन अर्पो अर्पया रापो, कोई मिले प्रभ मिलथे। हर के गुण बहुत बहुत बहुत शोभा, हम तुच्छ कर कर वर्ण थे, हमरी मत वसगत प्रभ तुमरे, जन नानक के प्रभ समर्थ थे, कल्याण महल्ला चौथा। मेरे मन जप हर गुना कथ सुन थई, धर्म अर्थ सब काम मोख है, जन पीछे लग फिर थई रहाओ। सो हर हर नाम ते आवे हर जन, जिस वड भाग मथई, जै दरगह प्रभ लेखा मांगे, तै छूटे नाम ते आए थई। हमरे दुख बहु जन्म जन्म के, दुख हमें मैल लग थई, गुरतार कृपा हर जल ना वाए, सब के लिख पाप कथई। जन कह हृदय अंतर प्रभ स्वामी, जन हर हर नाम भज थई, जह अंति अवसर आए बनत है, तै राखे नाम साथ थई। जन तेरा जस गावे हर हर, प्रभ हर जप्यो जगंग नथी, जन नानक के प्रभ राखे स्वामी, हम पाथर रख बुड़ थई, कल्याण महला चौथा। हमरी चितवनी हर प्रभ जान, और कोई निंद करे हर जन की, प्रभता का कहया एक तल नहीं मानै रहाओ। और सब त्याग सेवा कर अच्युत, जो सब ते ऊंच ठाकर भगवान है, हर सेवा ते काल जोहे ना सकै, चरणी आए पवे हर जन, जा कौ राख ले मेरा स्वामी, ता कौ समत दे पै कान, ता कौ कोई अपर ना सकै, जा की भगत मेरा प्रभ मान। हर के चोज विडान देख जान, जो खोटा खरा एक निमख पछान, ता ते जन कौ आनंद भया है, रिद्ध सुध मिले खोटे पछतान। तुम हरदा ते समर्थ स्वामी, एक मांगो तुझ पासो हर दान, जन नानक कौ हर कृपा कर दीजै, सद बसै हृदय मुहे हर चरान, कल्याण महला चौथा। प्रभ की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे, हम तुमरी करो नित्यास प्रभ, मोहे कब गल लावेंगे रहाओ। हम बारक मुग्ध एआन पिता समझावेंगे, सुत खिन खिन पूल बिगार जगत पित पावेंगे, जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे, मोहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावेंगे, जो हर पावे भगत तिन्ना हर पावेंगे, ज्योति ज्योत में लाए ज्योत रल जावेंगे। हरे आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे, जन नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे, शक्का एक कल्याण पोपाली महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, दुख निवारण नारायणे, सगल भगत जाचे सुख सागर, पावने दरन हर चिंता मणे रहाओ। दीन दयाल जगदीश दमोदर, हर अंतर जामी गोबिंदे, ते निरपो जिन श्री राम ते आया, गुरमत मुरार हर मुकंदे, जगदीशर चरण सरन जो आए, ते जन पावनित पार परे, भक्त जना की पैज हर राखे, जन नानक आप हर कृपा करे। राग कल्याण महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हमारे एह कृपा की जय, आलम करंद चरण कमल स्यों, मन फेर फेर दी जय रहाओ। आन जला स्यों काज ना कछुए, हर बूंद चात्रक कौ दी जय, बिन मिलबे नाही संतोखा, पेख दर्शन नानक जी जय। कल्याण महला पंजवा, जाचक नाम जाचे जाचे, सर्वतार सर्व के नायक, सुख समूह के दाते रहाओ। केती केती मांगन मांगे, पावनिया सो पाइये, सफल सफल सफल दर्शरे, परस परस गुण गाइये, नानक तत तत स्यो मिलिये, हीरे हीर बिधाइये। कल्याण महला पंजवा,
मेरे ललन की शोभा, साध नवतन मन रंगी शोभा रहाओ। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा, भगत दान जस मंगी, जोग ज्ञान ध्यान सेख नागै, सगल जपै तिरंगी। कहो नानक संतन बलिहार है, जो प्रभ के सद संगी। कल्याण महला पंजवा, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे मान हर हर मान। नैन बैन श्रवण सुनिए, अंग अंगे सुख प्राण रहाओ। ईत योत दह दिस रवेओ, मेरत ने समान। जत कथा तत पेखिए, हर पुरख पत प्रधान। साध संग भ्रम पै मिटे, कथे नानक ब्रह्म ज्ञान। कल्याण महला पंजवा, गुण नाद तोनिया आनंद बेद, कथत सुनत मुन जना, मिल संत मंडली रहाओ। ज्ञान ध्यान मान दान, मन रसक रसन नाम जपत, तै पाप खंडली। जोग जुगत ज्ञान भुगत, सुरत शब्द तत् बेते, जप तप अखंडली। ओत पोत मिल जोत नानक, कशु दुख ना डंडली। कल्याण महला पंजवा, कौन बेता की कहां करो, तरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया, अजर पद कैसे जरो रहाओ। बिशन महेश सिद्ध मुन इंद्रा, कै दर शरण परो, काहू पै राज काहू पै सुरगा। कोट मदे मुक्त कहो, कहो नानक नाम रस पाई है, साधु चरण गहो। कल्याण महला पंजवा, प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे, गर्भ जोन कल काल जाल, दुख विनाशन हर रखे रहाओ। नाम तारी शरण तेरी, प्रभ दयाल टेक मेरी। अनाथ दीन आसवंत, नाम स्वामी मनै मंत। तुझ बिना प्रभ किशु ना जानू, सर्व जुग मैं तुम पछानू। हर मन बसे निस बसरो, गोबिंद नानक आसरो। कल्याण महला पंजवा, मंत्र जापिए भगवान, गुर पूरे सो प्रसन्न पए, सदा सुख कल्याण रहाओ। सर्व कार्य सिद्ध पए, गाए गुण गोपाल, मिल साध संगत प्रभु सिमरे, नाठिया दुखकाल। कर कृपा प्रभ मेरे आ, करो दिन रहन सेव। नानक दास शरणागति, हर पुरख पूर्ण देव। कल्याण महला पंजवा, प्रभ मेरा अंतर जामी जान, कर कृपा पूर्ण परमेसर, निहचल सच शब्द निशान रहाओ। हर बिन आन ना कोई समर्थ, तेरी आस तेरा मंतान। सर्व घटा के दाते स्वामी, देह सो पहरन खान। सुरत मत चतराई शोभा, रूप रंग तन मान। सर्व सुख आनंद नानक, जप राम नाम कल्याण। कल्याण महला पंजवा, हर चरण सरन कल्याण करन, प्रभ नाम पतित पावनो रहाओ। साध संग जपन संग, जमकाल तिस ना खावनो। मुक्त जुगत अनक सुख, हर भगत लवै ना लावनो। प्रभ दर्श लुबद दास नानक, बहुड़ जोन ना तावनो। कल्याण महला चौथा, अष्टपदिया एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। रामा रम रामो सुन मन पीजै, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजै रहाओ। काष्ट मैं ज्यो है बैसंतर, मत संजम काढ़ कढ़ीजै। राम नाम है जोत सबाई, तत गुरमत काढ़ लईजै। नौ दरवाज नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजै। कृपा कृपा कृपा कर प्यारे, गुरसबदी हर रस पीजै। काया नगर नगर है नीको, विच सबदा हर रस कीजै। रतन लाल अमोल अमोलक, सतगुर सेवा लीजै। सतगुर अगम अगम है ठाकर, पर सागर भगत करीजै। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग, एक बूंद नाम मुख दी।

रस रसक गटक नित पीजै, बसदा सबत दीप है सागर, कड कंचन कर तरीजै। मेरे ठाकर के जन इनो ना बांचै, हर मांगै हर रस दीजै। साकत नर प्राणी सत भूखे, नित भूखन भूख करीजै। तावत ताए ताव है प्रीत माया, लख कोसन कौ बिथ दीजै। हर हर हर हर हर जन उत्तम, क्या उपमा तिन दीजै। राम नाम तुल और ना उपमा, जन नानक कृपा करीजै। कल्याण महला चौथा। राम गुरपारस परस करीजै, हम निर्गुणी मनूर या तफीके, मिल सतगुर पारस की जय। रहाओ सुरग मुक्त बैकुंठ सब बांछै, नित आसा आस करी जय। हर दर्शन के जन मुक्त ना मांगै, मिल दर्शन तृप्त मन धीजै। माया मोह सबल है भारी, मोह कालख दाग लगी जय। मेरे ठाकर के जन अलिप्त है मुक्ते, ज्यो मुर्गाई पंख ना पीजै। चंदन वास भुयंगम वेड़ी, के मिलिए चंदन लीजै। काढ़ खड़ग गुर ज्ञान करारा, बिक्षेद छेद रस पीजै। आन आन समदा बहुकीनी, पल बैसंतर पस्म करी जय। महायुगर पाप साक्त नरकी ने, मेरे साधु लुकी दीजै। साधु साधु साध जानी के, जनंतर नाम तरी जय। परस निपरस पय साधु जन, जन हर भगवान दखीजै। साक्त सूत बहु गुरुजी भरिया, क्यों कर तंत नीजै। तंत सूत किशनिक सह नाही, साकत संग ना कीजै। सतगुर साध संगत है नीकी, मिल संगत राम रवीजै। अंतर रतन जिवे हर माणक, गुर कृपा ते लीजै। मेरा ठाकर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिलै मिलीजै। नानक मेल मिलाए गुरपूरा, जन को पूर्ण दीजै। कल्याण महला चौथा। रामा राम राम राम रवीजै, साधु साधु साध जानी के, मिल साधु हर रंग की जय। रहाओ जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन कौ थम दी जय। बसदा तला तला सभी ऊपर, मिल साधु चरण रुली जय। अति उत्तम होवो, सब श्रेष्ठ चरण तल दी जय। गुरमुख जोत भली सिवनी की, आन पानी सख्त भरी जय। मैन दंत निकसै गुरबचनी, सार चब चब हर रस पी जय। राम नाम अन गुरो बहु किया, गुर साधु पुरख मिली जय। गुण राम नाम बिसीरन की है, हर सगल भवन जस दी जय। साधु साधु साध मन प्रीतम, बिन देखे रह ना सकी जय। ज्यों जल मीन जलंग जल प्रीत है, खिन जल बिन फूट मरी जय।

जागत बिकसै मूठो अंधा गल फाही सिर मारे तंदा आसा आवै मन सा जाए उर्जी ताणी किशना बसाए। जागस जीवन जागणहारा सुख सागर अमृत भंडारा रहाओ कहो ना बूझै अंधना सूझै पूंडी कार कमाई आपे प्रीत प्रेम परमेश्वर करमी।

आनदन नाम दान प्रतकारी त्रिवत तरंग तत्व विचारी अकथो कथो क्या मैं मोर अकथो कथो क्या मैं जोर भगत करी कराए मोर अंतर वसे चुके मैं मोर किसे भी दूजा नहीं होर गुर का शब्द महारस मीठा ऐसा अमृत अंतर डीठा जिन चाख्या पूरा पद होए नानक त्राप्यो तन सुख होए प्रभाती महला पहला अंतर देख शब्द मन मानिया अवरना रंग नहारा एनस जिया देख समाले तिस ही की सरकारा मेरा प्रभ रांकण अतरूढ़ दीन दयाल प्रीत मन मोहन आतरस लाल सगूढ़ रहाओ ऊपर कूप गगन पनिहारी अमृत पीवन हारा जिसकी रचना सोबित जाने गुरमुख ज्ञान विचारा पसरी किरण रस कमल बेगासे सस्कर सूर समाया काल विध्वंस मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रपाया आत रस रंग चलू लै राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मैं रावल खप जावे चौछे मैं सन्यासी जोगी कापड़िया सिर खूथे बिन शब्द है गल फासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मैं पीख्या जाची एक भाए लिवलागी रहाओ ब्राह्मण वाद पढ़े कर किरिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किछ सूझे नाही मनमुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सुचाचारी साची दर गए माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जो जुग साज समाने सगले कर्म धर्म सुच संजम जप तप तीर्थ शब्द वसे नानक सदगुर मिले मिलाया दुख प्राहित काल नसे प्रभाती महला पहला संता की रेण साध जन संगत हर कीर्त तरतारी कहां करे बपरा जम डर पै गुरमुख हृदय मुरारी जल जाओ जीवन नाम बिना हर जप जाप जपो जप माली गुरमुख आवे साध मना रहाओ गुर उपदेश साच सुख जा कहो क्या तिस उपमा कही है लाल जवेहर रतन पदार्थ खोजत गुरमुख लही है चीन ज्ञान ध्यान तन साचो एक शब्द लिव लावे निरालंब निरहार निह केवल निरपव ताड़ी लावे सायर शब्द भरे जल निर्मल उल्टी नाम तरावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहि समावे सो गिरही सो दासो दासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख विरला कोई बूझे।

कार्य आचार बहु संपो संचय जो कुछ करे सो नरक पर है। एको शब्द एको प्रवर्त है सब एक स्ते उत्पत्त चल है। नानक गुरमुख मेल मिलाए गुरमुख हर हर जाए रल है। प्रभाती महला तीजा मेरे मन गुर अपना साला है। पूरा भाग हुआ मुखमस्तक सदा हर के गुण गाहे रहाओ। अमृत नाम भोजन हर दे कोट मदे कोई विर ला ले। जिसन अपनी नजर करे गुर के चरण मन माहे वसाए। दुख नेरा अंदरों जाए आपे साचा ले मिलाए। गुर की बाणी सो लाए प्यार व्यथ उथ हो आधार। आपे देवे सृजनहार सच्चा मनाए अपना पाणा। सोई भगत सुगड़ सुजाणा नानक तिसकै सतगुरबाणा। प्रभाती महला चौथा विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रसक रसक गुण गावै गुरमत लिव उन्मन नाम लगान। अमृत रस पिया गुर शब्दी हम नाम विटो कुरबान। हमरे जग जीवन हर प्राण हरि उतमरे दे अंतर पायो। गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर नाम वखान। कित बिद क्यों पाई है प्रभ अपना मोको करो उपदेश हर दान। सत संगत में हर हर वसिया मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई गुर सतगुर परस भगवान। गुण गावै प्रभ अगम ठाकुर के गुण गाए रहे हैरान। जन नानक कहो गुर कृपा तारी हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा उगवै सूर गुरमुख हर बोलै सब रहन संभालै हर गाल। हमरै प्रभ हम लोच लगाई हम करह प्रभु हर पाल। मेरा मन साधु तूर रवाल हर हर नाम दृढ़ायो गुर मीठा। गुर पग चारो हम बाल रहाओ साकत कहो दिन रहन अंधारी। मोहे फाथे माया जाल खिन पल हर प्रभ हृदय न वस्यो रिन बांधे बहु विदबाल। सत संगत मिल मत बुद्ध पाई हो छूटे ममता जाल। हर नामा हर मीठ लगाना गुरु किए शब्द निहाल। हम बारक गुर अगम गोसाई गुर कर कृपा प्रतपाल। बिख पाओ जल डुब दे काढ लिहो प्रभ गुर नानक बाल गोपाल। प्रभाती महला चौथा एक खिन हर प्रभ कृपा तारी। गुण गाए रसक रसीक गावत सुनत दो पहे मुक्ते। जिन्ना गुरमुख खिन हर पीक मेरा मन हर हर नाम। मेरा मन हर हर राम नाम रस टीक। गुरमत नाम शीतल जल पाया गुरमुख नाम शीतल जल पाया। हर हर नाम पिया रस चीक रहाओ। जिन हर हृदय प्रीत लगानी तिन्ना मस्तक उजल टीक। हर जन सोभा सब जग उपर ज्यो विच उड़वा ससकीक। जिन हर हृदय नाम न वसियो तिन सब कारज फीक। जैसे सिंगार करै देह मानुख नाम बिना नकटे नक कीक। कट कट रमैया रमत राम राय सब वरतै समयीक। जन नानक कव हर कृपा तारी गुर बचन ते आयो करी मीक। प्रभाती महला चौथा अगम दयाल कृपा प्रभ तारी। मुख हर हर नाम कहे पतत पावन हर नाम ते आयो। सब किल विख पाप लहे जप मन राम नाम रव रहे। दीन दयाल दुख पंजन गायो गुरमत नाम पदार्थ लहे रहाओ। काया नगर नगर हर बसयो मत गुरमत हर हर सहे। शरीर सरोवर नाम हर प्रगटयो कर मंदिर हर प्रभ लहे। जो नर परम परम उदयाने ते सागत मूड मोहे। ज्यो मृग नाभ बसै बास बसना प्रम प्रम्यो चार गहे।
ਤੋਂ ਵੱਡ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਪ੍ਰਭ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਗੁਰ ਹਾਥ ਸਿਰ ਧਰਿਓ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਪਿਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਡਫਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸੁਖਾਨੇ ਹੀ ਅਰੈ ਹਰ ਧਾਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਫਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਖਫਾ। ਹਰ ਹਰ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਤਨ ਬਸਫਾ ਰਹਾਓ। ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਵਸਿਓ ਕਰ ਮੰਦਰ ਜਪ ਸੋਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਪਫਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਜਨ ਭਏ ਸੁਹੇਲੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰਫਾ। ਅਨਪਉ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰਿਓ ਗੁਰਨਿਮਖਫਾ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਕੇ

हर हर आप धरियो हर जन में जन नानक हर प्रभ एक फा। प्रभाती महला चौथा। गुर सतगुर नाम दृढ़ायो हर हर हम मोए जीवे हर जप बा। तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा बिख डुबदे बह दे कडबा। जप मनो राम नाम अर्धम्बा उपजंपो पाए न पाइए कतहूं। गुरपूरै हर प्रभ लभ रहाओ। राम नाम रस राम रसायन रस पिया गुरमत रसबा। लोह मनूर कंचन मिल संगत हर उर तारियो गुर हरबा। हौं मैं बिखिया नित लोभ लुभाने पुत कलत मोहे लुभबा। तिन पग संतन सेवे कभू ते मनमुख पूंबर परबा। तुमरे गुण तुम ही प्रभ जानो हम परे हार तुम सरन बा। ज्यो जानो त्यों राखो स्वामी जन नानक दास तुम नवा। शका एक। प्रभाती विभास पड़ताल महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मानो हर हर नाम निधान। हर दरगह पावे मान जिन जपया ते पार प्राण रहाओ। सुन मानो हर हर नाम कर ध्यान। सुन मानो हर कीर्त अठसठ मजान। सुन मन गुरमुख पावे मान जप मन परमेश्वर प्रधान। खिन खोवे पाप कोटान मिल नानक हर भगवान। प्रभाती महला पंजवां विभास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन हर किया तन सब साजिया पंच तत् रजोत निवाजिया। सहजा धरत बर्तन कौ पानी निमख ना विसारो सेवो सारंग पानी। मन सतगुर सेव होए परम गते हर सोग ते रहे निरारा। ता तू पावे प्राण पते रहाओ। कापड़ भोग रस अनक पुंचाए मात पिता कुटुंब सगल बनाए। रिजक समाहे जलथन मीत सो हर सेवो नीता नीत। तहां सखाई जै कोई ना होवै कोट अपराध एक खिन में तोवै। दात करे नहीं पछोतावै एका बख्स फिर बहुर ना बुलावै। किरत संजोगी पाया पाल साध संगत में बसे गोपाल। गुर मिले आए तुमरे द्वार जन नानक दर्शन देहो मरार। प्रभाती महला पंजवां। प्रभ की सेवा जन की सोबा काम क्रोध मिटे तसलोबा। नाम तेरा जन कै पंडार गुण गावै प्रभ दर्श प्यार। तुमरी भगत प्रभ तुम्हें जनाई काट जेवरी जन लिए छडाई रहाओ। जो जन दाता प्रभ कै रंग तिन सुख पाया प्रभ कै संग। जिस रस आया सोई जन पेख पेख मन में हैरान। सो सुखिया सब ते उत्तम सोए जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए। सोई निश्चलिया वै ना जाए अंदर प्रभ के हर गुण गाए। ता को करो सगल नमस्कार जा कै मन पूर्ण निरंकार। कर कृपा मोहे ठाकुर देवा नानक उदरै जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवां। गुण गावत मन होए आनंद आठ पैर सिमरो भगवंत। जा कै सिमरन कलमल जाहे तिस गुर की हम चरनी पाहे। सुमत देवो संत प्यारे सिमरो नाम मोहे निस्तारे रहाओ। जिन गुर कहया मार्ग सीधा सगल त्याग नाम हर गीदा। तिस गुर कै सदा बल जाइए हर सिमरन जिस गुर ते पाइए। बूढ़त प्राणी जिन गुरै तराया जिस प्रसाद मुहै नहीं माया। हलत पलत जिन गुरै सवारिया तिस गुर ऊपर सदा हों वारिया। महामुगते किया ज्ञानी गुरपूरे की कथ कहानी। पार ब्रह्म नानक गुरदेव वड़ै पाग पाइए हर सेव। प्रभाती महला पंजवां। सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया। कर कृपा अपनी सेवा लाए सगला दुर्त मिटाया। हम बारक सरन प्रभ दयाल
अवगण काट किए प्रभ अपने राख लिए मेरे गुरु गोपाल रहाओ। ताप पाप बिनसेखिन पीतर पै कृपाल गुसाई सास पार ब्रह्म आराधी अपने सदगुर कै बल जाई। अगमै गोचर बेअंत स्वामी ता का अंत ना पाई है लाहा खाट हुई है तनवंता अपना प्रभु त्याई है। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया। प्रभाती महला पंजवां सिमरत नाम किलबिक सब नासे सच नाम गुरदीनी रासे प्रभ की दरगह सो बावंते सेवक सेव सदा सोहंते हर हर नाम जपो मेरे भाई सगले रोग दोख सब बिनसै अज्ञान अंधेरा मनते जाई रहाओ। जन्म मरण गुर राखे मीत हर के नाम से लागी प्रीत कोट जन्म के गए कलेस ज्योतिष पावे सुफल होस तिस गुर कहो सदा बन जाई जिस प्रसाद हर नाम ते आई ऐसा गुर पाई एवड भागी जिस मिल ते राम लिव लागी कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी सगल कटाके अंतर जामी आठ पहरे अपनी लिव लाए जन नानक प्रभ की शरण आए। प्रभाती महला पंजवां कर कृपा अपने प्रभ कीए हर का नाम जपन कौ दिए आठ पहर गुण गाए गोबिंद पै बिन से उतरी सब चिंद उबरे सतगुर चरनी लाग जो गुर कह सोई पल मीठा मन की मत त्याग रहाओ। मन तन वस्या हर प्रभ सोई कल कलेश कल कलेश किश विघन ना होई सदा सदा प्रभ जी कै संग उतरी मैल नाम कै रंग चरण कमल स्यों लागो प्यार बिन से काम क्रोध हंकार प्रभ मिलन का मार्ग जाना पाए भगत हर स्यों मन माना सुन सज्जन संत मीत सुहेले नाम रतन हर अगे अतोले। सदा सदा प्रभ गुण निध गाई है कहो नानक वड भागी पाई है। प्रभाती महला पंजवां से धनवंत से ही सच साहा हर की दरगह नाम विसाहा हर हर नाम जपो मन मीत गुरपुरा पाई अवड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाओ। पाया लाभ वजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान। बिन से काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उत्तर सपार प्रभाती महला पंजवां गुरपुरा पूरी तां की कला गुर का शब्द सदा सद अटला गुर की बाणी जिस मन वसै दुख दर्द सब तां का नसै हर रंग राता मन राम गुण गावै मुक्तो साधु तुहरी नावै रहाओ। गुरप्रसादी उतरे पार पौ परम बिन से बेकार मन तन अंतर बसे गुर चरना निरपै साध परे हर सरना आनंद सहज रसूक नेरे दुश्मन दुख ना आवै नेरे गुरपुरे अपने कर राखे हर नाम जपत किलबिख सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले गुरपुरे प्रभ सिउ लै मेले जन्म मरण दुख पहा काटिया कहो नानक गुर पड़दा ढाकिया। प्रभाती महला पंजवां सतगुर पूरे नाम दिया आनंद मंगल कल्याण सदा सुख कार्ज सगला रास्थिया रहाओ। चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द परम बिन से झूठे नेत उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पैरार सिमरो प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जय हो जाई। दोय कर जोड़ करी अरदास सदा जपे नानक गुणतास। प्रभाती महला पंजवां पार ब्रह्म प्रभ सूढ़ सुजान गुरपुरा पाईए वडभागी दर्शन कौ जाइए कुर्बान रहाओ। किलबिख मेटे शब्द संतोख नाम आराधन होवा जोग सा संग होवा प्रगास चरण कमल मन माए निवास जिन किया तिन लिया राख प्रभ पूरा अनाथ का नाथ
ਜਿਸੈ ਨਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ।

सर्वसिद्ध कल्याण पूर्ण होए सगल काम। हर को नाम जपिए नीत, काम क्रोध अहंकार बिरसै लगै कै प्रीत रहाओ। नाम लागै दुख पागै शरण पालन जोग, सदगुर पेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैण दिन सत्याय हर हर तजो मन के परम, साध संगत हर मिले जिसे पूर्ण कर्म। जन्म जन्म बिखाद बिन से राख लीने आप, मात पिता मीत भाई जन नानक हर हर जाप। प्रभाती महला पंजवां विभास पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम राम राम राम जाप, कल कलेस लो मोह बिरस जाए अहंताप रहाओ। आप त्याग संत चरण लाग, मन पवित जाहे पाप। नानक बार को कछु ना लाग जाने, राखण को प्रमाई बाप। प्रभाती महला पंजवा, चरण कमल शरण टेक। ऊच मूच बेअंत ठाकर, सर्व ऊपर तुही एक रहाओ। प्राण आधार दुख बिदार, दैन हार बुद्ध विवेक। नमस्कार रखन हार, मन आराध प्रभु मेक। संत रेण करो मज्जन, नानक पावै सुख अनेक। प्रभाती अष्टपदियां महला पहला, विवास एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। लपट रही फुन बंध ना पाया, सतगुर राखे नाम दरड़ाया। ना मन मरै ना माया मरै, जिन किश किया सोई जाने। शब्द विचार पौ सागर तरै रहाओ। माया संच राजे हंकारी, माया साथ न चले प्यारी। माया ममता है बहुरंगी, बिन्ना मैं को साथ न संगी। ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा। जैसा कर्म तैसी लिव लावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए। सतगुर पेटै सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिव लाए। सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे। निकरवा सिमर पद पावे, तांदर सच्चे सोभा पावे। गुर सेवा बिन भगत ना होई, अनेक जतन करे जे कोई। हमे मेरा सबदे खोई, निर्मल नाम वसै मन सोई। इस जग में शब्द करनी है सार, बिन शब्द होर मोह गुबार। शब्दे नाम रखे और तार, शब्दे गत मत मुख द्वार। अवर नाही कर देखण हारो, साचा आप अनूपया पारो। राम नाम उत्तम गत होई, नन खोज लह जन कोई। प्रभाती महला पहला, माया मोहे सगल जग छाया। कामन दे काम लोबाया, सुत कंचन संहेत वधाया। सब किश अपना एक राम पराया। ऐसा जाप जपो जप माली, दुख सुख पर हर भगत निराली रहाओ। गुण निदान तेरा अंत ना पाया, साज शब्द तुझ माहे समाया। आवा गौण तुझ आप रचाया, सही भगत जिन सच चित लाया। ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी, बिन सतगुर भेटे कोई न जानी। सगल सरोवर जो समाणी, आनंद रूप विटों कुरबाणी। पाओ भगत गुरमति पाए, हम मैं विचों शब्द जलाए। तावत रखे ठाकर हाए, सच्चा नाम मन वसाए। बिसम बिनोद रहे परमादी, गुरमत मान्या एक लिव लागी। देख निवारया जल मैं आगी, सो बूझे होवे वड भागी। सतगुर सेवे परम चुकाए, अंदर जागे सच लिव लाए। एको जाने अवर ना कोए, सुखदाता सेवे निर्मल होए। सेवा सुरत शब्द विचार, जप तप संजम हो मैं मार। जीवन मुक्त जा शब्द सुनाए, सच्ची रहत सच्चा सुख पाए। सुख दाता दुख मिटन हारा, अवर ना सूजिस बीजी कारा।
ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰੇ ਆਗੈ ਰਾਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮਹਾਰਸ ਚਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਭਯੰਗਮ ਪਾਠੀ, ਰੇਚਕ ਪੂਰਕ ਕੁੰਭ ਕਰੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਪਰਮੇ ਪੂਲਾ ਬੂਡ ਮਰੈ। ਅੰਧਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਪਰਤ ਹੋਵੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਫੋਕਟ ਸਭ ਕਰਮਾ, ਜਿਉ ਬਾਜੀ ਗਰ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ। ਖਟ ਕਰਮ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਅਵਗੁਣ ਮੋਹੀ ਰਹਾਉ। ਮਾਇਆ ਤੰਦਾ ਧਾਵਣੀ, ਦੁਰਮਤਕਾਰ ਬੇਕਾਰ, ਮੂਰਖ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦਾ ਬੂਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਰ। ਮਨਸਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਮਨਮੁਖ ਬੋਲ ਖੁਆਰ, ਮੱਜਨ ਝੂਠਾ ਚੰਡਾਲਕਾ, ਫੋਕਟ ਚਾਰ ਸਿੰਗਾਰ। ਝੂਠੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ, ਝੂਠੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਰਨ ਹੈ, ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਵੈ ਸਾਧ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਹੋਰ ਕਮਾਵਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਆਵੈ ਸਾਧ। ਦੁਸ਼ਟੀ ਸਭਾ ਵਿਗੁੱਚੀ ਐ, ਵਿਖਵਾਤੀ ਜੀਵਨ ਬਾਦ। ਇਹ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਮਰੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖੋਈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ, ਆਵੈ ਜਾਹੇ ਮਰੈ ਮਰ ਜਾਈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਧਾਤ, ਇਸਨੋਂ ਵਿਆਪੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਸੋ ਸੇਵਹੋ ਜਿਸ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪ, ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਕੈ ਤਿਸਨਾ ਆਰਿਆਪ। ਜੈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਤੈ ਸੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਹੈ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਹੋਰ ਸਭ ਪਾਖੰਡ ਪੂਜ ਖੁਆਰ। ਦੁਬਦਾ ਚੂਕੈ

शीतरुपेण नानक शीतलंग सास्वजन है मंत्रंग राम राम नामंग ध्यानंग सर्वत्र पूर्ण है ज्ञानंग सम दुख सुखंग युक्त निर्मल निर्वैरण है दयालंग सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है भोजनंग गोपाल कीर्तनंग अल्प माया जल कमल रहित उपदेशंग समित्र सत्र है भगवंत भगत पावनी पर निंदा न स्रोत श्रवणंग आप त्याग सगल रेण कै खट लखन पूर्णंग पुरख है नानक नाम साध सवजन है अजा पोगंत कंद मूलंग बसंते समीप केहर तत्रगते संसार नानक सोग हरखंग व्यापते छलंग शिद्रंग कोट बेगनंग अपराधंग किल बखमलंग परम मोहंग मान अपमानंग मदंग माया व्यापतंग मृत्यु जन्म प्रमंत नरक अनक उपावंग न सिद्ध्यते निर्मलंग साध संग है जपंत नानक गोपाल नामंग अरमंत गुण गोविंद नित प्रत तरन तरन शरण स्वामी रमणशील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रपूर्ण है निराश आस करणंग सगल अर्थ याले है गुण निधान समरंत नानक सगल जाचंत जाचक है दुर्गम स्थान सुगमंग महादुख सर्व सुखण है दुर्वचन भेद परमंग साकत फसनंत सुरजन है अस्थतंग सोगहरखंग पै खीणंत निर्भव पै अटवियंग महानगर वासंग धर्म लखन प्रमया साध संगम राम राम रमणंग शरण नानक हर हर दयाल चरणंग हे अजित सूर संग्रामंग अत बल ना बो मर्दन है गण गंधर्व देव मानुख्यंग पशपंखी बेमोहन है हर कर्ण हारंग नमस्कारंग शरण नानक जगदीश्वर है हे कामंग नरक विश्रामंग बहुजोनी प्रमावण है चित हरणंग त्रैलोक गम्यंग जप तपसील विदारण है अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है तव पै बिमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण हे काल मूल क्रोधंग कदंच करनाना उपर्जते बिखयंत जीवंग वस्यंग क्रोत निरत्यंग क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तव संगे अदमंग नर है दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रखिया करोत हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकारंग अनक भांत बहु डोलते नच मित्रंग नच हिष्टंग नच बांधव नच मात पिता तव लज्जिया अकरणं क्रोत अखाद खाद्यंग असाज्यंग साज समझिया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलंग हे जन्म मरण मूलंग अहंकारंग पापात्मा मित्रंग तजंत सत्रंग दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख वो बहुगण है परम प्यान उद्यान रमणंग महाविकट असाध रोगण है वैद्यंग पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगद गुरो हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरो हे शरण योग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय समरंत नानक राम दामोदर माधव चरण कमल शरणंग रमणंग गोपाल कीर्तन है सा संगीन तरणंग नानक महासागर पैदुत्तर है सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मंग हस्त काया रख्या परमेश्वर है आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है सर्व रख्या गुरदयाल है पै दुख विनाशन है भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरखा चुत है जैन कला तारियो आकाशंग बैसंतरंग काष्ट बेष्टंग जैन कला ससूर नक्षत्र ज्योत्यंग सासंग शरीर तारणंग जैन कला मात गर्भ प्रतिपालंग नैच जंत जठ रोगण
तेन कला अस्थम्बं सरोवरं नानक नहश जंत तरंग तोयेण गुसाई गृष्ट रूपेण सिमरणं सर्वत्र जीवन लब्धं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतन मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपीलक सागरं लंघंत पिंगं तम प्रगास अंधक साध संगेण स्मरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरे तिलकहीणं जथा विपरा अमरहीणं जथा राजन आवदहीणं जथा सूरा नानक धर्महीणं तथा वैष्णव न शंखं न चक्रं न गदा न स्यामं आश्चर्य रूपं अरहंत जन्मं नेत नेत कथंत वेदा ऊंच मूचा पार गोविंद बसंत साध हृदयं अचत बुझंत नानक वडभागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान स्याल खर बिखम स्थान मन मोह मदरंग महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमनं अहु फांस दीखण कठन पावक तो असाध कोरंग अगम तीर न लंगन पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरन कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगल रोग खंडन सा संगेन गुण रमत नानक सरण पूर्ण परमेश्वर श्यामलंग मदर मानुखयंग हृदयंग भू वैरण निवंत होवंत मिथ्या चेतनंग समंत स्वजन अचेत मूडा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत्यक्ष जंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते हरिचंत पुरख कुटंब लीला अनित आसा विख्या विनोद परमंत परमंत जन्म हार्यो शरण नान करनामय हे जहबे हे रसगे मदर प्रिया तोयंग सत हतंग परम बादंग अवर्त एथ सुध अक्षरण गोविंद मोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन मतंग बलवंत बलात् कारण चरण कमल नह भजंत तरण समान त्रिग जन्मन हे पपील का ग्रष्टे गोविंद सिमरन तोयंग धने नानक अनक बार नमो नम त्रिणंगता मेरंग सहकंता हरियंग बूडंगता तरियंग ऊनंगता परियंग अंधकार कोट सूर ओजारंग बिनवंत नानक हर गुर दयारंग ब्रह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गहंग ते नर नानक ने फल पर दर्भ हिरणंग बहु विघ्न करणं उचरणंग सर्वजी कै लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माए कर्म करत सासु करै मते समेव चरणं उदरणं पै दुतर अनेक पात कहरणं नानक साध संगम ना संशय महला पंजवां गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख देहं मलीणं मज्जा रुद्र दुर्गंधा नानक अथगर बेण अज्ञानन परमाणो पर जंत आकाश दीप लो से खंडन गशेण नैण पारेण नानक बिना साधु ना सिद्ध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पढ़ंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधव लब्ध्यंग साध संगेण नानक सोख्या स्थानं गोपाल भजनं लब्ध्यंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदन निकट बसंतो बांसो नानक अहं बुद्ध ना बोहते गाथा गुम्फ गोपाल कथं मथं मान मर्दन हतं पंच सतरेण नानक हर बाणे परहारण
बचन साध सुख पंथा लहंथा बड़ कर्मण अरहंता जन मरणेन रमणंग नानक हर कीर्तन। पत्तर पुर जेन चढ़ियंग नह जड़ियंग पेड़ संपता नाम बेहूण बिखमता नानक बहंत जोन बसरो रैणी। पावनी साध संगेन लबंतंग बड़ पागण हर नाम गुण रमणंग नानक संसार सागर ने व्यापण। गाथा गूढ़ अपारंग समझणंग बिरला जन संसार काम तजणंग नानक गोबिंद रमणंग साध संग में। सुमंत्र साध बचना कोट दोख बिनासन हर चरण कमल ध्यानंग नानक कोल समूह उदाहरण। सुंदर मंदर सैन जेण मद हर कीर्तन मुक्ते रमण गोबिंद नानक लभद्यंग बड़ भागण। हर लभदो मित्र सुमितो बिदारण कदे ना चित्तो जा का अस्थल तोल अमितो सोई नानक सखा जी संग कितो। अबज संग मिटंत सत पुत्र है सिमरताबर दै गुरमंत्रण। प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण। मरणंग बिसरणंग गोबिंद जीवणंग हर नाम त्यावण लबणंग साध संगेण नानक हर पूर्व लिखण। दसन बिहून पुयंगंग मंत्रंग गारड़ी निवारंग व्याध्योपण संतंग नानक लब्ध कर्मण। जाथ कथ रमणंग शरणंग सर्वत्र जियण तथ लगणंग प्रेम नानक प्रसादंग गुरदर्शन। चरणार बिंद मन विद्यंग सिद्ध्यंग सर्व कुशलण गाथा गावंत नानक पब्यंग परा पूर्वण। शुभ बचन रमणंग गवणंग साध संगेण उदरण संसार सागरंग नानक पुनरप जन्म न लभ्या ते। वेद पुराण शास्त्र विचारंग एकंकार नाम उरतारंग कुले समूह सगले उदारंग वडपागी नानक को तारंग। सिमरणंग गोबिंद नामंग उदरणंग कुल समूहण लब्ध्यंग साध संगेण नानक वडभागी पेटंत दर्शन। सर्व दोख परंग त्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतण लब्धेण साध संगेण नानक मस्तक लिखण। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं। सुखैन बैन रत्नं रचनं कुसुम्बरंगण रोग सोग बेयोगं नानक सुखना सुपन। फुनहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कलम या गम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कहण ना जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बहस के कीर्त मैं कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब देवा। आस प्यासी सेज सोकंत विशाई है हर हा मस्तक होवे भाग ता साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोल सब है के साजया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजया। जे करे आवे कंत ता सब कुछ पाई है हर हा कंत बाज सिंगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वसया कंत सावड भागणे तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागणे। हौ सुती होया चिंत मन आस पुराइया हर हां जा कर आया कंत ता सब किश पाईया पाईया। आस आईती आस के आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाईया। मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया।
कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुत्तरे हो संसार सतगुरु तराया मिटाया आवा गौण जा पूरा पाया हर हाय अमृत हर का नाम सतगुर दे पाया मेरे हाथ पद्म आंगन सुख बसना सखी मोरे कंठर तन पेख दुख नसना बसो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हारिद सिद्ध नव निद बसै जि सदा कर परतरे रावण जाहे सेई ताला जिया नित प्रत हिरै पर दर्ब शिदर कद ढाकी हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारई ऊपर बने आकाश तलै तर सोहती दह दिस चमकै बीजल मुख जोहती खोजत फिरो बदेस पियो कत पाई हर हां जे मस्तक होवै भाग ता दर्श समाई है।

समन जव इस प्रेम की, दम केहो होती साट, रावण होते सो रंकन जिन सिर दीने काट। प्रीत प्रेम तन खच रहया बीच नाराई होत, चरण कमल मन बेदेओ बुजन सुरत संजोग। सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम, मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए, बिंदे बांदे कमल में पवर रहे लपटाए। जप तप संजम हरख सुख मान महत्यार गर्भ, मूसन निमखक प्रेम पर वार वार देओ सर्ब। मूसन मर्म न जान नहीं मर्त हिरत संसार, प्रेम परम न बेदेओ उर्जो मिथ व्यवहार। कब दब जब जारी है बिशरत प्रेम बेहाल, मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल। जां को प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे, नानक बिरही ब्रह्म के आन न कतहूं जाहे। लख काटी ऊंचो कनो चंचल चीत बेहाल, नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल। कमल नैन अंजन श्याम चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार। मगन पयो प्रे प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग, प्रगट पयो सब लो मैं नानक अदम पतंग। श्लोक भगत कबीर जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कबीर मेरी सिमरनी रसनाई उपर राम, आज जुगा दी सगल भगत ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी जात कहो सबको हसने हार, बलिहारी इस जात कहो जे जप्यो सृजनहार। कबीर डगमग क्या करे कहां डुलावे जियो, सर्व सुख को नायको राम नाम रस पियो। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ, दिसे दांदे कान ज्यो जिनमन नाही नाओ। कबीर ऐसा एक याद जो जीवत मृतक होए, निरपय होए कै गुण रवे जत पेखों तत सोए। कबीर जा दिन हो मुआ पाछे पया आनंद, मोहे मिलियो प्रभ अपना संगी भजे गोबिंद। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बुझिया मीत हमारा सोए। कबीर आई मुझे पै अनक करे कर पेस, हम राखे गुरे अपने उनकी नो आदेश। कबीर सोई मारिए जे मुए सुख होए, पलो पलो सब को कह बुरो न माने कोए। कबीर राती हो मैं कारिया कारे उबे जंत, लह फाहे उठतावते से जान मारे भगवंत। कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ो टाग पलास, ओए पी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर बांस बडाई बूढ़िया इओ मत डूबो कोए, चंदन कै निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। कबीर दीन गवाया दुनी से ओ दुनी ना चली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफले अपने हाथ। कबीर जय जय हों फिरे ओ कौतक ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बहरा उजर मेरे पाए। कबीर संतन की चुंगिया पली पाठक सती गाओ, आग लगो तेह तौल हार जे नाही हर को नाओ। कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोबो सागत बापरे जो हट है हट बेकाए। कबीर सागत ऐसा है जैसी लक्षण की खान, कोने बैठे खाई है प्रगट होए निदान। कबीर माया डोलनी
ਪਵਨ ਵਹਿ ਹਿਵਤਾਰ, ਜਿਨ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨ ਖਾਇਆ, ਅਵਰ ਬਿਲੋ ਬਨਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ, ਮੁਸ ਮੁਸਲਾ ਵਹਿ ਹਾਟ, ਏ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਬਾਰੈ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ, ਕਰੈ ਜੋ ਬਹੁਤੈ ਮੀਤ, ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ, ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨੀਤ। ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਆਰਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਕੈ ਕਬੀਰਾ, ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲ, ਨਹੀਂ ਪਟ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ, ਨਹੀਂ ਗਾਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ। ਕਬੀਰ ਤਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜਾਂ ਕੋਠਾ ਕਰ ਰਾਮ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ ਆਵੈ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਅੰਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੈ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੈ ਘਰ ਰਮੁੜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜਾ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ, ਅੰਧ ਪਰੇ ਤਸਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ, ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕ ਸਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੈ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਬੀਰ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੀ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੇ ਮਰਨੇ ਜੋ ਮਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਰੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਬੀਰਾ ਤੁਹੀ ਕਬੀਰ, ਤੂੰ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਕਬੀਰ, ਆਰਾਮ ਰਤਨ ਤਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਜੈ ਸਰੀਰ। ਕਬੀਰ ਚੰਖ ਨਾ ਚੰਖੀਐ, ਤੁਮਰੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰਮ ਕਰੀਮ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਕੈ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਸੋ ਸਹਿ, ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਉਜਲ ਪੈਰੈ ਕਾਪਰੇ, ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਖਾਹੇ, ਇਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਂਧੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰ ਜਰਾ, ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਰਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਾਰਡ

हुए सो हुए। कबीर बैसनो की कुकर भली, सागत की बुरी माए, ओह नित सुने हर नाम जस, ओ पाप बिसाहन जाए। कबीर हरना दुबला, एहो हरियारा ताल, लाख अहेरी एक जियो केता बंचो काल। कबीर गंगा तीर जो कर करै, पीवै निर्मल नीर, बिन हर भगत ना मुक्त होए, इयों कह रमे कबीर। कबीर मन निर्मल पया जैसा गंगा नीर, पाछै लागो हर फिरै कहत कबीर कबीर। कबीर हर दी पियारी चूना उज्जल पाए, राम स्नेही तो मिलै दोनों वरन गवाए। कबीर हर दी पी रतन हरै चून चिहन ना रहाए, बलिहारी यह प्रीत कहो जे जात वरन कुल जाए। कबीर मुक्त द्वार।

आए कबीर ऐसा सतगुर जे मिलै तुठा करे पसाओ मुग द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर नाम है शान ना शापरी नाम है करनी गाओ मत हर पूछे कौन है मेरे जात ना नाओ। कबीर मोहे मरने का चाओ है मरो ता हर कै द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कबीर ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किस हर किया पयो कबीर कबीर। कबीर सुपने हूं बरड़ाए कै जे मुख निकसे राम ताके पग की पानी मेरे तन को चाम। कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्यो नाओ चार दिवस के पाहुने बड़ बड़ रूंदे ठाओ। कबीर मेहंदी कर काले आया पीसाए पीसाए तै सह बात ना पूछिए कबो ना लाई पाए। कबीर जे दरियावत जाते हो हटके नाही कोए सो दर कैसे छोड़ी है जो दर ऐसा होए। कबीर डूबा था पै उबरियो गुण की लहर चबक जब देखियो बेड़ा जर्जरा तब उतर परयो हाँ फर्क। कबीर पापी भगत ना पावई हर पूजा ना सुहाए माखी चंदन पर हरे जै बिगंत जाए। कबीर बैद मुआ रोगी मुआ मुआ सब संसार एक कबीरा नाम हुआ जे नाही रोवनहार। कबीर राम ना त्यायो मोटी लागी खोर काया हांडी काठ की ना उचरै बहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को पावत कीन मरने ते क्या डरपना जब हास दौरा लीन। कबीर रस को गंडो चूसिए गुण को मरिए रोए अवगुण यारे मानस है पलो न कह है कोए। कबीर गागर जल परी आज काल जय है फूट गुर जो ना चेत अपनो अदमाज ली जय गे लूट। कबीर कुकर राम को मुतिया मेरो नाओ गले हमारे जेवरी जय खिंचे तै जाओ। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए हृदय राम ना चेत ही ये जपनी क्या होए। कबीर बिरो पुजंग मन बसे मंत ना माने कोए राम बियोगी ना जिये जिये ता बौरा होए। कबीर पारस चंदन तिन है एक सुगंध तेह मिलते ऊ तुम पहे लो काठ निर्गंध। कबीर जम का ठेंगा बुरा है ओ नहीं सहया जाए एक जो साधु मोहे मिले ओ तेन लिया अंचल लाए। कबीर बैद कहे हौ ही भला दारू मेरे वस ए तो बस्त गोपाल की जब पावे लेखस। कबीर नौ बते अपनी दिन दस लिहो बजाए नदी नाव संजोग ज्यो बौर न मिल है आए। कबीर सात समुंदर मस करो कलम करो बन राए बसदा कागज जो करो हर जस लिखन ना जाए। कबीर जात जुलाहा क्या करे हृदय बसे गोपाल कबीर रमैया कंठ मेल चूके सर्व जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदिर दे जराए पांचो लड़के मार कह रह राम लियो लाए। कबीर ऐसा को नहीं एहो तन दे वै फूक अंधा लोग ना जान नहीं रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चह चढ़ी सुनो वीर मसान लोग सबाया चल गयो हम तुम काम निदान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर सोई फिर कह तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर ओह चूले ओह चीरी है साकत संग नहेर। कबीर पार पराई सिर चरै चले ओ चाहे बाट अपने पारे ना डरै आगे औकट काट।
ਕਬੀਰ ਬਨ ਕੀ ਦਾਦੀ ਲੱਕਰੀ ਠੰਡੀ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰ ਮਤ ਬਸ ਪਰੋ ਲੁਹਾਰ ਕੇ ਜਾਰੈ ਦੂਜੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋਏ ਮੂਏ ਦੋਏ ਮਰਨ ਤੈ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੈ ਸ਼ੈ ਮੂਏ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋਏ ਨਾਰ ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਕਹੂ ਨਾ ਪਾਇਓ ਠਾਉਰ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਕਹਾਂ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਕੀ ਅੰਤ ਕਰੈ ਨਿਰਵਾਹੋ ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਹੋ ਕਬੀਰ ਜਗ ਮੈਂ ਚੇਤਿਓ ਜਾਨਕੈ ਜਗ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਬੰਦੈ ਜਨਮੇ ਆਏ ਕਬੀਰ ਆਸਾ ਕਰੀਏ ਰਾਮ ਕੀ ਅਵਰੈ ਆਸ ਨਿਰਾਸ ਨਰਕ ਪਰੈ ਤੇ ਮਾਨਈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਉਦਾਸ ਕਬੀਰ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਬਹੁਤੇ ਕੀਏ ਕੇਸੋ ਕੀ ਉਹ ਨਾ ਮੀਤ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਨ ਕਉ ਬੀਚੈ ਅਟਕੇ ਉਹ ਚੀਤ ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਬਪਰਾ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾ ਕਰੈ ਸਹਾਏ ਜਿਹ ਜਿਹ ਡਾਲੀ ਪਗ ਧਰੋ ਸੋਈ ਮੁਰ ਮੁਰ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਹੈ ਕਉ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ ਰਾਸ ਬਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਕਰ ਕਾ ਖੇਤ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ ਜੋ ਕੀ ਪੂਸੀ ਖਾਓ ਹੋਨ ਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਗਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ ਸਾਗਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ ਤੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ

कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते परम ना जाए, आप डुबे चौबे मैं चेले दिए बहाए। कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए, प्रगट पे निदान सब जा पूछे धर्म राए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटंब, तंदा करता रह गया भाई रहा ना बंद। कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए, सरपन होए क्या उतरे जाए अपने खाए। कबीर हर का सिमरन छाड़ के अहोई राखे नार, गधी होए क्या उतरे पार सह मन चार। कबीर चतराई अत कनी हर जप हिरदय माहे, सूरी ऊपर खेलना ग्रहता ठहर नाहे। कबीर सोई मुख तन है जा मुकैय राम, देही किसकी बापरी पवित्र होए गो ग्राम। कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास, जे कुल दास न उपजै सो कुल ढाक पलास। कबीर है गए बाहन सगन कानो, लाख तजा फहराए, या सुख ते पिखिया पली जो हर सिमरत दिन जाए। कबीर सब जग हों फिरयो मांदल कंध चढ़ाए, कोरी कोई काहू को नहीं सब देखी ठोक बजाए। मार्ग मोती बीथरे अंधा निकस्यो आए, जोत बिना जगदीश की जगतो लंगे जाए। बूढ़ा बंस कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के कर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजे कोए, पाछे पाव ना दीजिए आगे होए सो होए। कबीर जग बांध्यो जे जेवरी, तेह मत बंधो कबीर, जह आटा लोन ज्यो सोन समान शरीर। कबीर हंस उड्यो तन गाड्यो, सो जाई सैनाहा, अज हूं जियो ना छोड़ई रंकाई नैना। कबीर नैन निहारो तुझ कहो, श्रवण सुनो तो नाओ, बैन उचरो तो नाम जी चरण कमल रिद ठाओ। कबीर सुर्ग नर्ग ते मैं रहो, सदगुर के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहो अंत अर्याद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, कह बे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख कह कह कहो कहे ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख गुन गाए। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरे कुंज मन माया ममता रे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख भरे सरताल, चातरक जो तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकी जो निस बिछरे आए मिले प्रभात, जो नर बिछरे राम स्यो ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बेशोरिया रहोरे संख मजूर, देवल देवल ताहड़ी देसै उगवत सूर। कबीर सूता क्या करे जाग रोए पै दुख, जाका बासा गोर मैं सो क्यों सो वै सुख। कबीर सूता क्या कर है उठ के ना जपै मुरार, एक दिन सोमन होए गो लांबे गोट पसार। कबीर सूता क्या कर है बैठा रहो अर जाग, जाके संगते बिछरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गल ना छोड़ी है मार्ग लागा जाओ, पेखत ही पोनीत होए पेट जपिए नाओ। कबीर साक्त संग ना कीजिए दूर जाइए भाग, बासन कारो परसिए तौ कछ लागे दाग। कबीरा राम ना चेतियो जरा पहुंचो आए, लागी मंदिर द्वार ते आप क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो जो कि नो करतार, तिस बिन दूसर को नहीं एक है सृजनहार। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब, जाय पहुंचे खसम को जो बीच न खाही कांब। कबीर ठाकर पूजे मोल ले मानहर तीर्थ जाहे, देखा देखी स्वांग तार पुले पटका खाहे। कबीर पाहन परमेश्वर किया पूजे सब संसार।

काटो। कबीर काल करंता अब है कारो, अब करता सोए ताल, पाछे कछु न होएगा जब सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जनतिक देखिया जैसी तोई लाख, दिसे चंचल बहुगुना मत हीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो जमना करे तिस्कार, जिन एहो जमुआ सिरजिया सो जपया परवदगार। कबीर कस्तूरी पया पवर पए सबदास, ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास। कबीर गह गज परे कुटुंब कै कंठे रह गयो राम, आए परे धर्म राय के बिचै तू माताम। कबीर सागते सूकर पला राखे अच्छा गाओ, ओ सागत बपरा मर गया कोई न लह नाओ। कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोर, चलती बार ना कश मिलियो लई लंगोटी तोर। कबीर बैसरों हुआ ता क्या पया माला मेली चार, बाहर कंचन बारहा पितर परी पंगार। कबीर रोड़ा होए रहो बाटका तज मन का अपमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा

सर्वांग कबीर पानी हुआ ता क्या पया सिरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, ऊच पवन कर कामनी शिखर तजा फहराए, ताते पली मधुकरी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर पाला राम भगत जेठाए, राम स्नेही बाहरा जमपुर मेरे पाए। कबीर गंग जमन के अंतरे सहज सुन के काट, तहां कबीर है मटकिया खोज तुम जन बाट। कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ ओढ़, हीरा किसका बापरा पुज नारतन करोड़। कबीरा एका चंबो देखियो हीरा हट बिकाए, बंजन हारे बाहरा कौडी बदल जाए। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां लोभ तह काल है, जहां खिमा तह आप। कबीर माया तजी ता क्या पया जो मान तजया नहीं जाए, मान मुनि मुनमर गरे मान सबे को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक, लागत ही पोए मिल गया परया कले जे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मह चूक, अंधे एक न लाग गई जो बस बजाई फूक। कबीर है गए बहन सगन कहन छत्रपति की नार, ताश पटंतर ना पुजय हर जन की पनिहार। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवार बिखै को ओ सिमरै हर नाम। कबीर थूनी पाई थित पई सतगुर बंदी तीर, कबीर हीरा बन जया मान सरोवर तीर। कबीर हर हीरा जन जहोरी लेके मंड हाट, जब ही पाई है पारखू तब हिरन की साट। कबीर काम परे हर सिमरिय ऐसा सिमरो नित, अमरापुर बासा करो हर गया बहोरै बित। कबीर सेवा को दोए पले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। कबीर जे मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक अवकट काटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किसका लाज सी जबले तरह मसान। कबीर डूबे गोरे बापरे बहु लोगन की कान, पारोसी के जो हुआ तू अपने पी जान। कबीर पली मधुकरी नाना बिद को नाज, दावा काहू को नहीं बड़ा देश बड़ राज। कबीर दावे दा जिन होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जानो निर्दावे रहे सो ग्रह इंद्र सो रंक। कबीर पाल समूहा सरवर परा पी ना सके कोई नीर, भाग बड़े तै पायो तू पर पियो कबीर। कबीर पर बाते तारे खिसे त्यों एहो खिसे शरीर, ए दो अखर ना खिसे सो गह रहो कबीर। कबीर कोठी काठ की दैदस लागी आग, पंडित जल मुए मूर्ख उबरे पाग। कबीर संसा दूर करो काग दे बिहाए, बावन अखर सोध कै हर चरणी चितलाए। कबीर संत ना छड़े संतई जो कोट कमले असंत, मलयागर भुजंगम बेड़ो ता शीतलता नात जंत। कबीर मन शीतल पाया ब्रह्म ज्ञान, जिन जो आला जग जा रहा सो जन के उदक समान। कबीर सारी सृजन हार की जाने नाही कोए, कह जाने अपन तनी कह दास दीवानी होए। कबीर पली पई जो पौ परिया दिशा गई सब पूल, ओरा घर पानी पया जाए मिलियो टलकूल। कबीरा तूर सकेल कै पुरिया बांधी देह, दिवस चार को पेखना अंत खेह की खेह। कबीर सूरज चांद कै उदय पही सब देह, गुर गोबिंद के बिन मिले पलट पही सब खेह। जह अन पौ तह पह नहीं, जह पौ तह हर नाहे, कहो कबीर विचार कै
संत सुनो मन माए। कबीर जिनो किशु जानिया नहीं तिन सुख नींद बिहाए, हमो जो बूझा बूझना पूरी परी बलाए। कबीर मारे बहुत पुकारिया पीर पुकारे और, लागी चोट मरम की रहो कबीरा ठौर। कबीर चोट सुहेल की कबीर चोट सुहेली सेल की, लागत ले ओ सास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास। कबीर मुल्ला मुनारे क्या चढ़ा, साई ना बैरा होए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए। शेख सबूरी

तब जानिया मिटे मोह तन ताप, हर सोग दाजै नहीं तब हर आप आप। कबीर राम कहन में भेद है ता मैं एक विचार, सोई राम सब कह है सोई कौतकार। कबीर राम मैं राम कहो कहबे माहे बबेक, एका ने कह मिल गया एक समाना एक। कबीर जाकर साधना सेवी है हर की सेवा ना है, ते कर मरहट सारखे पूत बसे तिन माए। कबीर गुंगा हुआ बावरा बैरा हुआ कान, पावो ते पिंगल पया मारिया सदगुरबान। कबीर सदगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया प्राकरे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत यो मन नहीं होए गई पठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम में लाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाए। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलिया खुदाए, साई मुझ से लर परया तुझे किन फुरमाई गाए। कबीर हज काबे होए होए गया केती बार कबीर, साई मुझ मैं क्या खता मुखो ना बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर, कहते है जो हलाल, दफ्तर दई जब कार्ड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सोजल।

मुख ते राम समाल, हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल। महला पंजवा, कबीरा हमरा को नहीं, हम किसहु के नाहे, जिन एहो रचन रचाया तिसी माए सुमाहे। कबीर की चिड़ियाटा गिर परया, किशु ना आयो हाथ, पीस्त पीस्त चाबिया सोई निभया साथ। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए पर कबीर लागी प्री सुजान, स्यों बरजै लो गया जान, ता स्यों टूटी क्यों बने जाके जी प्राण। कबीर कोठे मंडप हेत कर, काहे मरो सवार, कार्ज साढ़े तीन हाथ कहीं ता पौने चार। कबीर जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चेतना होए। महला तीजा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद सवैये श्री मुखबाक महला पंजवां आदि पुरख करतार करण करण सब आपे सर्ब रहो भरपूर सगल कट रहो ब्यापे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अब

विचार, जगत पिता है सर्व प्राण को आधार, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार पर, परै ही ते परै अपरे अपार पर, आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार, उपत पर लो एक है निमख तो कर, आन नाही समसर उजियारो निर्मर, कोट प्राहित जाहे नाम लिए हर हर, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जिही क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सगल पवन तारे एक थे किए बिस्थारे, पूर रहो सर मैं आप है निरारे, हार गुण नाही अंत पारे जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे कुदरत है देखारे, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, सर्वगुण निधान कीमत ना ज्ञान ध्यान, ऊचे ते ऊचो जानी जय प्रभ तेरो थान, मन तन तेरो प्राण एक सूत है जहान, कौन उपमा देओ बड़े ते बडान, जाने कौन तेरो पेओ अलख्या पार देओ, अकल कला है प्रभ सर्व को तान, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, एक जी क्या बखाना, हां के बल बल बल बल सद बलिहार, निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी, हर खवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी, गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी, जा कहो हे कृपाल सुजन प्रभ तुम्हें मिलासी, तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जन परसयो, से जन्म मरण दो थे रहो, सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिए, दूसरे अन्न अवर पुरख पौ रतन सुनिए, अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए, जेहे रसन चाखेओ तेहे जन तृप्ति अगाए, जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सत्संग ते प्यार, हर गुरु नानक जन परसयो तिन सब कुल कियो उधार, सच सभा दीवान सच सच्चे पै तरयो, सच्चे तख्त निवास सच तपावस करयो, सच सिरजियो संसार आपिया पुल ना पुलो, रतन नाम अपार कीम न हो पवे अमलो, जे कृपाल होयो गोबिंद सर्व सुख तिन हूं पाए, हर गुरु नानक जन परसयो ते बौड़ फिर जोन ना आए, कवन योग कवन ज्ञान ध्यान कवन बिद उस्तत करिए, सिद्ध साधक ते तीस कोर तिरकी मना परिए, ब्रह्मादिक संकाद से गुण अंत ना पाए, अगाव गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए, जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते, हर गुरु नानक जन परसयो ते इत्युत सदा मुक्ते, प्रभ दाता दातार परयो जाच के कसरना, मिले दान संतरेन जेहे लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकर पावे, देहो दर्श मन चाओ भगतो मन ठहरावे, बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म, सवैये श्री मुख बाक महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, काची देह मोह फुन बांधी सठ कठोर कुचील कुग्यानी, तावत परमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी, जोबन रूप माया मदमाता विचरत बिकल बढ़ो अभमानी, पारतान पारे अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हितानी, बल बंच शब करते पावा पेक्त संत प्रभ अंतर जामी,
ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਇਓ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋਹਨ ਪਾਪ ਬਿਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵੈ ਬਿਦ ਕੁਲੈ ਸਮੂਹ ਉਦਾਹਰਨ ਸੋ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਨ ਸਤਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਤ ਤਾਉ ਮੂਰਤ ਕਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਛੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਹਾਂ ਦੁਖ ਪਾਉ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਤ ਨਾਮ ਭਜ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਰੰਗ ਆਤਮ ਸਿਉ ਰਉ ਰੰਚਕ ਰੇਤ ਖੇਤ ਨਿਰਮਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਧਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੋਧੇ ਸੁਖ ਪੁੰਚਤ ਸੰਕਟ ਕਾਟ ਬਿਪਤ ਹਰੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਅਰ ਬੰਧਪ ਬੂਜਨ ਕੀ ਸਭ ਸੂਝ ਪਰੀ ਵਰਧਮਾਨ ਹੋਵਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਆਵਤ ਨਿਕਟ ਬਿਖਮ ਜਰੀ ਰੇ ਗੁਣਹੀਨ ਦੀਨ ਮਾਇਆ ਕ੍ਰਿਮ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਕਰੀ ਕਰ ਗੈ ਲਿਹੋ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ ਨਾਨਕ ਕਾਟ ਭਰਮ ਪਰੀ ਰੇ ਮਨ ਮੂਸ ਬਿਲਾ ਮੈਂ ਗਰਬਤ ਕਰਤਬ ਕਰਤ ਮਹਾਮੁਗਨਾ ਸੰਪਤ ਦੋਲ ਚੋਲ ਸੰਗ ਚੂਲਤ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਪ੍ਰਮਤ ਕੁਗਨਾ ਸੁਤ ਬਣਤਾ ਸਾਜਨ ਸੁਖ ਬੰਧਪ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੋਹ ਬਡਿਓ ਸੋ ਕਨਾ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਅਹੰ ਮਮਯੰਕਰ ਬੀਤ ਤਿਉਧ ਕਰਤ ਅਗਨਾ ਮਿਰਤ ਮਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ ਪੁੰਚਤ ਪੁਖਤ ਪੂਖ ਪੁਖਨਾ ਸਿਮਰ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਜਗ ਜਾਨਤ ਸੁਪਨਾ ਦੇਹਨ

वर्ष एक हो फिर ओ किने नौ पर चौलायो कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे तिन के गुणों क्या कहो गुरदय मिलायो पिखिया जिब तू रखे तिव रहो पहर समाद सुना हो ज्ञान है आसन चढ़ो धर्म तनख कर गहे हो भगत सीले सर लड़े हो पै निरपो हरा टल मानो शब्द गुर ने जा गड्डे हो काम क्रोध लो मोह अपत पंच दूत बेखंडे आओ पलो पुहाल तेजो तना निरपद नाथ नानक बार गुर अमरदास सल पान तैं दल जितो इव युद्ध कर कन हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत ग्रंत नयावै रव सस्करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्ह जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै सवैये महल्ले चौथे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सदगावो गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जिने की आसा सतगुर से परम पद पायो अब नासी अब गाते आयो तिस भेटे दर दरना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन और धरिया हर नाम रस गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे छुटत प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवै संत करै मन मज्जन पुबजनो सेवा करिया तिन पहु निवार अन पै पादीना शब्द मात्र ते उदर धरे कव कल ठकर हरदास तने गुर रामदास सरा पर परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सतसंगत आत्म रंग चलूल पया जागया मन कवल सहज प्रकाशया अपै निरंजन।

ज्ञान अर ध्यान अनन पार जाम गुरु होए वल शब्द साखी सो सच्चै कर जो गुरु गुरु अहनस जपै दास पट बेनत कह जो गुरु नाम रिद मैं तरै सो जन्म मरण दोथे रै गुर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवै गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै गुर कर सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुर कर शब्द सपुन अगन कटै सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करहो गुरु सत कब नल कह जिन गुरु ना देखियो नहो कियो ते अक्यत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समर्थ कल युग सुनत समाद शब्द जिसके रे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो तरत ध्यान बसत तेहे नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पी उस पे वन की वंशत सिद्ध को बिद मिलायो पूर्ण पो मन ठौर बसो रस बासन से जो दहंग दिस्तायो गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम जलन तीर विपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हथ तरियो गुर कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरण अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पन दास सुवास जगतर गुरु की पारस पेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हथ तरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाग सफारे करे आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी शीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया गनका पड़त पूरे तेह काज श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए राखो दास पाठ की लाज झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै रसन अहनस रसै सत कर जानिया फुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है ते आईऐ अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया बचन गुर रिद तरो पंच पू बस करो जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया जाओ ता सब सुख एत्योत तुम बंश वो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान अहनस करो बचन गुर दे तार फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर सदा निर्वैर निरंकार निरपौ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुखो भजो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लेवल आई है फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुरति आई है अमृत प्रवाह छुटकंत सा द्वार जिस ज्ञान गुर बिमर सर संत सिख नाई है नाम निर्वाण निदान हर उर तरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाई है गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरह नारदाद सनकाद हर गुरमुख है तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेनत कह नाम गुरमुख लह।

श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा, सत युग जंत्र ऊपर श्री प्रहलाद भगत उदरियंग, हस्त कमल माथे पर धरियंग, अलख रूप जी लख्या ना जाई, साधक सिद्ध सगल सरनाई, गुर के बचन सत जी तारो, मानस जन्म देह निस्तारो, गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाईए गुर बिन मुक्त ना होए, गुरु नानक निकट बसै बनवारी तन लहना थाप जोत जगतारी, लहना पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले कौ दिया, तिन श्री रामदास सोडी थर थपे आओ, हर का नाम अखै निध अपियो, हर नाम अखै निध चहो जुग गुर सेवा कर फल लहियंग, बंदे जो चरण सरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियंग, प्रतख देह पार ब्रह्म स्वामी आद रूप कोखण परणंग, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणंग, जेह अमृत बचन बाणी साधु जन जप है कर बचित चाओ, आनंद नित मंगल गुर दर्शन सफल संसार, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीते जम लोक पतत जे प्राणी हर जन सेव गुर ज्ञान रते, रग बंस तिलक सुंदर दशरथ कर मुन बंछे जा की सरणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन मरण पग्गा ए आई ही है प्रतीत, प्रतीत ही है आई जन जन कै तिनको पदवी उच पई, तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई, अवलोकिया ब्रह्म परम सब छुटकिया, दिव दृष्ट कारण करणं, सतगुर गुर सेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरणं, प्रताप सदा गुर का कट कट प्रगास पया, जस जन कै एक पड़े सुने गावै प्रभाते करै इशनान, इशनान करै प्रभात शुद्ध मन, गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कौ, ज्योत स्वरूपी ध्यान तरं, जग जीवन जगन्नाथ जल थल मैं रहया पूर बहुविध वर्णं, सतगुर गुर सेव अलख गत जां की श्री रामदास तारण तरणं, जिनों बात निश्चल त्रू जानी तेई जीव काल ते बचा, तिन तरयो समुंदर रुद्र खिन एक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा, कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, श्री गुरु साहिब सब ऊपर मन बच क्रम से भी है सच्चा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, कवल नैन मदर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जसोद जिसै दही पात खाहे जियो, देख रूप यातन रूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चुनतकार खेल पाहे जियो, काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सकै, ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही है चाहे जियो, सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो, राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार, बेसुमार सर्वर कौ काहे जियो, सुथर चित भगत हित
ਪੇਖ ਧਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ ਹਰਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ ਜੀਓ ਸੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਆਪ ਆਪ ਕੀਓ ਸ਼ਦਮ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਕੌਣ ਤਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਪੀਤ ਬਸਨ ਕੁੰ ਦਸਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸਹਿਤ ਕੰਠ ਮਾਲ ਮੁਕਟ ਸੀਸ ਮੋਰ ਪੰਖ ਚਾਹੇ ਜੀਓ ਬੇਵਜੀਰ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਧਰਮ ਅੰਗ ਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੇ ਜੀਓ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੈ ਸਿਧ ਰੂਪ ਧਰਿਓ ਸਾਹਨ ਕੈ ਸਾਹੇ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ ਨਿਹ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਨ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਲ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮੱਛ ਕੱਛ ਹੋ ਬਰਾਹਾ ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾ ਰਹੀਏ ਤਾਰ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸਿਉਂ

चरण कमल सदा से ओ दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन ग्यंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। निरंकार प्रभ सदा सलामत, कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरे तैं अगणत, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन उपाई, रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका। वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर परगासा। आपे जल आपे थल थम्मन, आपे किया कटकट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा। गुरमुख संगत सबै बिचारो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहे गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन।

निरंजन जचना, गुरप्रसाद पाइए परमार्थ सत संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने, शिव ब्रंच तर ध्यान नित जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समरथ तरन तारन प्रभ सोई। नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रसै, श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्तै बसै। गुरु समरथ गह करिया, ध्रुव बुद्ध सुमत सुमारन को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण को। मथुरा जन जान कही जी साच, सो और कशु ना विचारन को। हर नाम बोहित बड़ो कल मैं, पवसागर पार उतारन को। संतत ही सत संगत संग, सो रंग रते जस गावत है, धर्म पंथ तरयो तरनी तर आप, रहे लिव तारना तावत है। मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छित ही फल पावत है, रव के सुत को तिन त्रास कहा, जो चरण गुरु चितलावत है। निर्मल नाम सुदा परपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथाह अत बड़ सुबर, सदा सब दर्त नागर। संत मराल करे कंतूहल, तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कल जुग दुर्त दूर कर बे कहो, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जा को मन ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कब होक को उपावे आत्म प्रगास को, वेद बाणी सहत बरंच जस गावे जा को, शिव मुन गहे नात जात कबलास को। जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट पेख किए फिरत उदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी, नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को। नाम निदान ध्यान अंतर्गत, तेज पुंज तिहो लोग प्रगासे, देख दर्श पटक प्रम पजत, दुख परहर सुख सहज बिगासे। सेवक सित सेवक सिख सदा अतलुबत, आलस मुह जो कुसम सुभासे, बिद मान गुर आप थप्यो थिर, साचो तख्त गुरु रामदास। तार्यो संसार माया मद मोहत, अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत, रिद अर सिद्ध न छोडे साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एहो तथ, ताहे कहां परवाह काहू की, जां कै बसीस धरयो गुर हथ। तीन पवन पर पूर रहयो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही हो पायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुर नर, गण गंधर्व खो जंत फिरे, अब नासिया चाला जोनी संपाओ, पुरखोत में आपार परे। करण कारण समरथ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो, जय जग मैं तैं हर परम पद पायो। सतगुरु नानक भगत करी, एक मन तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त निज तारी, अगम ज्ञान रस रसयो हियो। गुर अमरदास करता

नारद ध्रुव प्रहलाद सुदामा पुब भगत हर के जुगण अमरीक जय देव त्रिलोचन नामा अवर कबीर पण तिन को अवतार भयो कल पिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो मनसा कर स्मरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिन बाचा कर स्मरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्श परस पारस सरबल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग मैं तै हर परम पद पायो जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खेन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद्ध सिद्ध नवनिद पावै सोई रामदास गुर बल पाण मिल संगत तन तन करो जे सतगुर लग प्रभ पाई है सो सतगुर सिमरो न रो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गौहर ज्ञान प्रगट उजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीर्त जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास जिव अंगद अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुर रामदास जिन सतगुर सेव पदार्थ पायो निसबासर हर चरण निवास ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मली अगर प्रगट सुबास ध्रुव प्रहलाद कबीर त्रिलोचन नाम लैत उपजो जो प्रगास जिह पिखत अत होए रहस मन सोई संत सहार गुरु रामदास नानक नाम निरंजन जाना कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नींव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जीही कश कही ना जाई सोडी सिरिट सगल तारन कहो अब गुर रामदास कहो मिली बढ़ाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै।

एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद श्लोक वारा ते वधीक महला पहला उतंगी पै ओहरी गहरी गंभीरी ससड़ सुइया केव करी निवण ना जाए थनी गच जे लगा गिड़वड़ी सखिए तौल हरी से पीट हंदे डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैण्या पार पहला वत सियाण कै ता की चै वापार दोही दिचै दुर्जना मित्रा को जयकार जित दोही सज्जन मिलन लहु मुंदे विचार तन मन दी जय सज्जना ऐसा हसन सार तिस सौ नेहो ना की चई जे दिसै चलन हार नानक जिनी एव कर बुझिया तिना मिटो कुरबान जे तू तारू पाण ताहू पुछ तड़न कल ताहू खरे सुजान वञाए नी कपरी चढ़ चखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखे सरी सतगुर सिंह आलाए बेड़े डुबन नाहे पौ नानक दुनिया कैसी होई।

तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे नाराम सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए कहो नानक सुन रे मना तह सिमरत गत होए जह सिमरत गत पाई है तेह पजरे तै मीत कहो नानक सुन रे मना औध कटत है नीत पांच तत् को तन रचियो जन

कट कट में हरजू बसै संतन कहो पुकार कहो नानक ते भज मना पौने दे उतर है पार सुख दुख जेह पर सह नहीं लोभ मोह अभमान कहो नानक सुन रे मना सो मूर्त भगवान उस्तत निंदया नाहे जेहे कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जां कह नहीं बैरी मीत समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहूं कौ देत नह नह पै मान त्यान कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जे बिखिया सगली तजी लियो पेख बैराग कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथे पाग जे माया ममता तजी सब ते पयो उदास कहो नानक सुन रे मना तहकट ब्रह्म निवास जेह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पशान कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान पै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम निस दिन जो नानक भजै सफल होहे तह काम जेह बा गुण गोबिंद पजह करण सुनो हर नाम कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार कहो नानक अपन तरै और न लेत उधार जो सुपना यार पेखना ऐसे जग को जान इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत कोटन मैं नानक को नारायण जह चीत जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सह नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत प्राणी कछु ना चेतई मद माया कै अंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा शरण राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण ता वही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन पजै रूप राम तह जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं फद रहयो बिसरयो गोबिंद नाम कहो नानक बिन

कहो नानक हर भजन बिन परत ताहे जम फंद। सुख मैं बहु संगी पै दुख मैं संग ना कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरयो मिट्यो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावै बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। करणो हो तो सोना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहे हो निकसत नाहिन मीत। नानक मूर्त चित्र ज्यों छाड़त नाहन पीत। नर चाहत कश और की और पई। चितवत रहो ठगौर नानक फासी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो ना कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूर्ण होवै काम। झूठे मान कहां करे जग सुपने ज्यों।

गर्व करत है देह को बिन सैशन मैं मीत, जह प्राणी हर जस कहो नानक तेह जग जीत, जेह कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सुकर सुवान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक एह बिद हर पायो एक मन होए एक चित। तीर्थ वर्त अरदान कर मन मैं तरै गुमान, नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर इशनान। सिर कंपियो पग डग मगे नैन ज्योत ते हीन, कहो नानक यह बिद पई तऊ नहर रसलीन। निज कर देखियो जगत मैं को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान लिहो रे मीत, कह नानक थिर नारा।

जो अनहोनी होए एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। जो उपजियो सो बिरस है परों आज कह काल नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कशु न होत उपाए नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभयो साथ कहो नानक एह बिपत मैं टेक एक रघुनाथ। नाम रहयो

राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईयो सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एहे वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला, राग एक संग पंच बरंगन, संग अलप आठ नंदन। प्रथम राग पैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम पैर भी बेलावली, पुनिया की गावे बंगली, पुन असलेखी की पई बारी। ए पैरों की पंचो नारी, पंचम हरख दिशाख सुनावे, बंगालम मदमाद वगावे। ललत बिलावल गावही, अपनी अपनी पांत। अष्टपुत्र भैरव के गावे गायन पात्र। द्वितीया माल कौसकिया लापे, संग रागनी पांचौ थापे। गोंड करी अर देव गंधारी, गंधारी सी हुती उचारी। तनासरी ए पांचौ गाई, माल राग कौशक संग लाई। मारू मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड कौशको भारा। खौ खटियो पौरा नद गाए, अष्टमाल कौशक संग लाए। पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत। उठह तान कलोल, गायन तार मिला वही। तेलंगी देव करी आई, बसंती संदूर सुहाई। सरस अहीरी ले पार जा, संग लाई पांचो वार जा। सुरमानंद पास कर आए, चंद्रबिंब मंगलन सोहाए। सरस बाण औ आहे बिनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं कहे सवारी, पुन आई दीपक की बारी।

अरदास एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ है शब्द खुजाए तेग बहादुर सिमर है कर नौन दयावै ताए सब थाई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दे वाली सब थाई हुई सहाय दसा पातशाहिया के स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरु साहिब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्ते हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया वंड के छकिया देग चलाही तेग वाही देख के अंडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारां ते अंतर के खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेसीस दित्ते बंद बंद कटवाए चरखड़ियां ते चढ़े आरिआं नाल चिराए गए गुरुद्वारां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहेगुरु वाहेगुरु। आप जी दे गुरसिखां नूं गुरसिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत पतकार आखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवै बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान तरके खालसा साहिब बोलो श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। हे महाराज श्री निरंकार ज्योति स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी दसा पातशाहियां के स्वरूप धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर ऐस वक्त अरदास बेनती है आप जी ने महान बख्शिश कीती है पातशाह जीओ आप जी दा ओट आसरा लैंदिया होया सेवक परिवार ने सहज पाठ आरंभ करवाया सी सहज पाठ दी सीडी दी सेवा कीती है सीडी बनाण दी सेवा करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है पाठ दा फल सेवक परिवार नूं बख्शण दी कृपालता करनी जी पाठी सिंह पासों पाठ करदिया अनेका भुलां होईयां होणगियां गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है बख्शण दी कृपालता करनी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी ने महान बख्शिश कीती है सहज पाठ दी निर्विघ्नता सहित समाप्ति होई है सेवक परिवार वालों आप जी नूं सोहणे रुमाले पछाके हाजिर होए हन आप जी ने अंगीकार करने सेवकां दे पर्दे कजने सेवक परिवार नूं गुरसिखी ते नामदान दी दात बख्शिश करनी पातशाह चढ़दियां कला बख्शिश करनियां पातशाह कारोबार च बरकतां पाउणियां अंग संग सहाई होना छे पौड़ियां आनंद साहिब दा पाठ होया बाणी पढ़ी सुनी सचखंड विखे प्रवान करनी बाणी दा भाव सेवक परिवार दे हिरदिआं विखे वसाउणा सेवक परिवार वालों पवित्र कड़ाह प्रसाद दी देग ते लंगर हाजर है आप जी दर ते प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते जो छके आप जी दा पवित्र नाम जपे सुख होवे नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा

0: बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जीओ, सो कहो टल गुर सेवी अहनस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। टोडी महला पंजवां, माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। रहाओ कोट जन्म के किल बिख नासै, सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा, दर्शन भेटत उत्तरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध, काम तेन पार जात हर हर रुख। नानक शरण गही सुख सागर, जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: You are listening to SeekNet Radio.

अहंकार, असंख जप, असंख पाव, असंख पूजा, असंख तपताव, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती, असंख दातार, असंख सूर मुह पखसार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कवन कहां विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद पहावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे,

अमूल गुण अमूल व्यापार अमूल व्यापार ये अमूल भंडार अमूल आवहे अमूल ले जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल प्रवान अमूल बख्शीस अमूल निशान अमूल कर्म अमूल फुरमान अमूलो अमूल।

विचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर, जोग जोग वेदा नाले, गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुर्ग माछ पयाले, गावन

जिनका भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी।

सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

तिन मुख टिके निकल है जिन मन सच्चा नाम कर्म मिले ता पाई नाहीं गली वाओ दुआओ एक आवह एक जाहे उठ।

कंत ना पहावई ता सब अडंबर कूड़। सब रस भोगण बाद है, सब रस भोगण बाद है, सब श्रृंगार विकार, जब लग शब्द ना पे।

तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नार त्रिपवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल श्री राग महला पहला।

वसहिं, ज्यों पावै त्यों निर्जास। जी अरे राम जपत मन मान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रहाउ। अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंख उतार, मुया जित कर जाइए, तित जीम दिया मर मार। अनहद शब्द सुहावणी।

त्रिगुण बंदी दे हुरी जो आया जग सो खेल विजोगी दुख विछड़े मन मुख लह ना मेल मन बैरागी घर वसै सच पैराता होए ज्ञान महारस भोग वै बाहुड़ भूख ना हो।

सदा नाम निदान, अंतर हर सरब रहया चूका मन अभिमान, हृदय कमल प्रगासया लागा सहज ध्यान, मन निर्मल हर रब रहया पाया दरगह मान। सतगुर सेवन अपना ते विरले संसार, हों मैं ममता मार कै हर राख्या उरतार, हों तिन

रते से निर्मले हों सद बलिहार जास। हृदय जिनका हर बसै तित कट है परगास। मन मेरे हर हर निर्मल त्याय। धुरमस्त

हर दरगाह पत खोए, हम मैं गुरमुख खोइए, नाम रत्ते सुख होए। मेरे मन अहनस पूर रही नित्यासा, सतगुर सेव मोह पर जलय, कर ही माहे उदासा रहाव। गुरमुख कर्म कमावे बिगसै, हर बैराग आनंद, अहनस भगत।

वह दूजै पाए। शब्द रतियां सोहा गणी, तिन विच आहो मैं जाए, तिन विच हो मैं जाए। सदा पिर राव है अपना, तिन्ना सुखे सुख विहाए।

जे सौ तीर्थ नहाए बहुविध कर्म कमावंदे दूनी मल लागी आए पड़िया मैल न उतरे पूछो ज्ञानियां जाए मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए।

गुर प्रसादी मुख उजला, जप नाम दान इशनान, काम क्रोध लोभ विनसया, तजया सब अभिमान।

अपार सखा सहाई अत वड्डा ऊंचा वड्डा अपार बालक बिरद ना जानिए निश्चल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाई निधारा आधार जिस पेखत किल विख हिरह मन तन हो वह शांत एक मन एक त्याई है मन की लाहे प्रांत गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जाकी दात सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात जिनका पूर्व लिखिया तिनका सखा गोविंद तान मान तहन अर्पी सबो सगल वारिय ए जिंद देख सुने हदूर साध कट कट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नु पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद श्री राग महला पंजवां।

आए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जीवाल दा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटां के नाथ श्री राग महला पंजवां।

नाम अमृत नदर निहाल मन मेरे सदगुर सेवा सार करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनहो विसार रहा।

थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा परपूर सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान सच्ची कुदरत धारियन सच सिरजोन जहान नानक जपिया सच नाम हों सदा सदा कुर्बान श्री राग महला पंजवा उद्दम कर हर जापना वडभागी तन खात संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू सब

नजर निहाल मन तन निर्मल होया लागी साच प्रीत चरण भजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत।

साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ कर कृपा प्रभ पेटिया मरन ना आवन जाओ मेरे मन हर पद सदा एक रंग घट घट अंतर रव रहया सदा सहाई संग रहा।

होए रहाव। सगल पदार्थ तिस मिले, सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुर डिठा जाए, गुर चरणी जिन मन लगा, सेवड पागी माए। गुरदाता समरथ गुर, गुर सब मह रहया समाए, गुर परमेश्वर पार ब्रह्म, गुर डुबदा लय तराए। कित मुख गुर साला ही है, करण कारण समरथ, से मथे ने चल रहे, जिन गुर तारिया हाथ। गुर अमृत नाम पिया लिया, जन्म मरण का पथ, गुर परमेश्वर सेविया, पै भंजन दुख लथ। सतगुर गहर गंभीर है, सुख सागर अगखंड, जिन गुर सेविया अपना, जमदूत न लागे डंड। गुर नाल तुल न लगई, खोज डिठा ब्रह्मांड, नाम निधान सतगुर दिया, सुख नानक मन महमंड। श्री राग महला पंजवां।

रहाउ जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई न पुछे तेरी बात पे यड़े शहु सेव तू साहुरड़े सुख वस गुर मिल चज आचार सिख तुद कदे न लगे दुख।

संसार। आप छोड़ सब होए रीणा जिस देव प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवां।

वड पुरख सुजाना रहाओ। मान अभिमान मंधे सो सेवक नाही, तत समदर्शी संत हो कोई कोट मंदाही। कहन कहावन इहो कीरत करला, कथन कहन

हथ वडियाइयां पूर्व लिखिया पाए सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक सचो सच बखाणिए सचो बुद्ध विवेक सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक श्री राग महला पंजवा।

गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरै सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हारन।

पास सतगुर शरणी आया बाहुड़ नहीं बिनास हर नानक कदे न विसरो इहो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत

नाम सास गिरास न विसर सफल मूर्त गुर आप गुर जीवड अवर न दिसई आठ पहर तिस जाप नदर करे ता पाई सच नाम गुणतास।

सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला घर पहला अष्टपदियां आख आख मन भावना ज्यों ज्यों जापै वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

दर दरवेश रसीद बरकत तिन कौ अगली पढ़ दे रैन दरूद बरकत तिन कौ अगली पढ़ दे रहन दरूद पुछ ना साजे पुछ ना टाहे।

ना जाए। नेत्र वै सुहागणी साची नदर रजाए, साच धड़ी मन धन मांडी है, साच धड़ी धन मांडी है, कापड़ प्रेम सिंगार चंदन चीत बसाया, मंदिर दसवां द्वार दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार, नारी

शब्द लंघावन हार निडरिया डर जानिए बाज गुरु गुबार आस्थिर करता देखिए होर केती आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदै पाए गोरड़ा खे से उबरे साचे स्यों लिवलाए।

बिन गुर कर्म न छुट सी कह सुन आथ बखान। सब गुणवंती आखी है मैं गुण नाही कोय, हर वर नार सुहावनी मैं पहावै प्रभ सोय। नानक शब्द मिला बड़ा ना वे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला।

पार, हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार। ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुप्त प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए। ऐसा

क्यों थिर रहे सुहाग पाई रे अवर नाही मैं थाऊ मैं तन नाम निदान है गुर दिया बल जाऊ रहाऊ।

राम जप हो सुख हो बिन गुर प्रेम न पाई शब्द मिले रंग होए रहाओ गुर सेवा सुख पाई है हर वर सहज सिंगार सच माने तिर से जड़ी गूड़ा हेत प्यार गुरमुख जान सियाणी गुर मेली गुण चार साच मिलो वर काम।

पीर रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर जैसी चात्रक में सार पार थल हरियावले एक बूंद न पवै खे सार पार थल हरियावले।

गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे। नानक तरिये सच नाम सिर शाहा पातशाह। मैं हर नाम ना विसरै हर नाम रतन वेसाह। मन मुख पौजल पच मोए गुरमुख तरे अथाह। श्री राग महला पहला घर दूजा

पहले स्तर है अष्टपदियां, श्री राग महल्ला तीजा। कर पहला अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुरमुख कृपा।

मनमुख पत गवाई बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई हर सुखदाता मन नहीं वसिया अंत गया पछताई तेई अड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया आनंदन भगत कर।

पंखी बिरख सुहावड़े उड़ है चौ दिस जाए, जेता उड़ है दुख कणे नित दाज है तै दिल लाहे। बिन गुर महल ना जापई ना अमृत फल पाहे, गुरमुख ब्रह्म हरियावला साचे सहज सुभाए। शाखा तीन निवारिया एक शब्द लिवलाए, अमृत फल हर एक है।

समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बुझई भेखी परम भुलाए गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस

ब्रह्म जाए। नाम पदार्थ पाई गुरमुख सहज सुभाए, बिन गुर गुण ना जापनी, बिन गुण भगत ना होए, भगत बछल हर मन वसिया, सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर सा लाही है, कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, माया मो मेरे प्रभ की ना आपे परम पुलाए। मनमुख कर्म करहै नहीं बूझ है, बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग मह चान।

जाने खट दर्शन जगया खट दर्शन जोगी सुनिया सी बिन गुर परम कुलाए सतगुरु सेव है तां गत मित पाव है हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए पंडित।

जियो। हो सतगुर विट हो कुमाया, जिन भ्रम भुला मार्ग पाया। नदर करे जे अपनी, आपे लै रलाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करतै आप लुकाया। नानक गुरमुख प्रगट होया, जां कौ जोत धरी करतार जियो। आपे खसम निवाजया, जियो पिंड दे साजया। अपने सेवक की पैज रखिया, दोए कर मस्तक धार जियो। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभ सब किछ जानदा।

जा जम पकड़ चलाया वणजारिया मित्रा किसे न मिलिया भेत भेत चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया।

तीर्थ वर्त सुच संजम नाही, कर्म धर्म नहीं पूजा, नानक पाए भगत निस्तारा, दुविधा व्यापै दूजा। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा, सर हंस उलथड़े आए, जोबन घटै जरुआ जणै, वणजारिया मित्रा आम घटै दिन जाए, अंत काल पछतासी, अंधले जां जम पकड़ चलाया।

खोवहो। गुर सतगुर स्वामी भेद न जानहु, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, सफलो रैन भगतां दी। श्री राग महला पंजवां।

कहो नानक भगत सोहे दरबारे, मन मुख सदा पवात, श्री राग महला चौथा घर दूजा शांत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मुंद इयाणी पे यड़े क्यों कर हर दर्शन पिखै, हर हर अपनी कृपा करे, गुरमुख सौहरड़ै कम सिखै, सौहरड़ै कम सिखै गुरमुख, हर हर सदा त्याए, सहियां विच फिरै सुहेली, हर दरगाह बां लुड़ाए, लेखा धर्म राय की बाकी, जप हर हर नाम के रखै, मुंद इयाणी पे यड़े गुरमुख हर दर्शन दिखै, व्याह हुआ मेरे बाबुला, गुरमुखे हर पाया, अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लाधा, हौ मैं रोग गया दुख लाथा, आप आपै गुरमत खादा,

दुख मिटाया, जितर गुप्त का कागद फारिया, जम दूता कछु ना चली, नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली।

अधहरे, गुण साध संग मिल गावे। नानक के स्वामी तार अनुग्रहो, मन तन अंक समावे। दखना सो हंदड़ो हब ठाए, कोई न दिसे डूजड़ो। खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट ते संत, तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार। बाणी बिचारी जियो सिमरत।

रंग रतड़ा हर रंग रत हर च्याव हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास तन तन वन जवा।

मन मूर्ख मिलै सजाए, जिन जियो पिंड दिता तिस कब हूं ना चेतै, जो देंदा रिजक संबाहे, जमका फाहा गल हो न कटिए, फिर आवै जाए, मन मुख किशु न सूजै अंधले, पूर्व लिखिया कमाए, पूरे भाग सत

कमाए, कूड़ कुसात कमाए, गुर प्रसादी मन जने हर से पीले बलाए। नानक गुरमुख सच कमावे, मन मुख आवे जाए पौड़ी, हर के संत सुन हो जन पाई, हर सतगुर की एक साखी। जिस तुर भाग होवे मुख मस्तक, तिन जन लय हृदय राखी। हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम,

पूजियै बिन सतगुर बूझ ना पाए। जप तप संजम पाणा सतगुरु का करमी पल्लै पाए। नानक सेवा सुरत कमावणी, नानक सेवा सुरत कमावणी, जो हर पावै सो थाए पाए पौड़ी। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किल विख पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिख

करे जिस आपणी तिस कर्म प्राप्त होए। नानक करणे नानक कारण करते बस है गुरमुख बूझै कोए महला तीजा। नानक हर नाम जिनी आराध्या अन दिन हर लिवतार। माया बंदी खसम की तिन अगै कमावै कार। पूरा पूरा कर छोड़या हुक्म।

कनक कलश एक पाया तिसमह तार चुवै अत निर्मल रसमह रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजया, तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटया पुरुषोत्तम

तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज पर त्रै मुख जो है सार अवसर ना पछाणिया। उन्मत काम महा बिख भूलै पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्बिया राम हृदय ते खोया। अवर मर्त माया मन तोले तौ भग मुख जन्म बगोया।

साई मिल सतसंगत खोजत साई विच संगत हर प्रभव सह जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारिक दीन करहो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जल मिल कमल।

जन नानक गुर मिल रहसै जियो। माज महला चौथा, हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर

अमृत रस सच अमृत बोली गुरपूरै अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सत पुरख मिलाइए मिल सत संगत मिल सत संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी मुख बोली गुरमत।

सारंग पाणी धन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक कड़ी न मिलते ता कल युग होता हुन कद मिलिए प्रिया तुद भगवंता मोहे रहन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ भाग होवा गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी करम है पाया सेव करी पल चसा न बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो।

तू आपे गुरमुख मुक्त कराए हैं, तू आपे मन मुख जन्म पवाए हैं। नानक दास तेरा बलिहारे, सब तेरा खेल दसहरा जियो। माज महला पंजवा, अनहद वाजै सहज सुहेला। शब्द आनंद करे सद केला, सहज गुफा महताड़ी लाई। आसन ऊच सवारया जियो, फिर घिर अपने ग्रह में आया। जो लोड़ींदा सोई पाया, तृप्त अगाए रहया है संत हो। गुर अनपौ पुरख दिखारया जियो, आपे राजन आपे लोगा। आप निर्वाणी आपे भोगा, आपे तख्त बह सच न्याई। सब चूकी कूक पुकारया जियो, जेहा डिठा मैं ते हो कहया। तिस रस आया जिन भेद लहया,

सुहाग बनाया, तित कर सखिए मंगल गाया, आनंद बिनोद तितै कर सोह है, जो धन कंत सिंगारी जियो। सा गुणवंती सा वडभागण, पुत्रवंती सीलवंत सोहागण, रूपवंत सा सुगड़ विचखण, जो धन कंत प्यारी जियो। अचारवंत साई परधाने, सब श्रृंगार बने तिस ज्ञाने, सा कुलवंती सा सबराई, जो पिर कै रंग सवारी जियो। महिमा तिसकी कहन ना जाए, जो पिर मेल लई अंग लाए।

धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवै जोगी बहुड़ बहुड़ उठता वै जियो कर कृपा मुहे साध मिलाया मन तन शीतल धीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावै जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर ध्यावह गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाईऐ होरत कितै न भांति जियो निरहारी केशव निरवैरा कोट जना जाके पूजह पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकांती जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दातारा गुरमुख नाम जपिय तित तरिय गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा।

दयाल रंगीले गहर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊच अथाह बेअंत स्वामी सिमर सिमर हौ जीवा जियो। दुख पंजन निधान अमोले निरभौ निरवैर अथा अतोले अकाल मूर्त अजूनी संपौ मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। सदा संगी हर रंग गोपाला ऊच नीच करे प्रतपा।

खीर अगावै ज्यों निर्तन तन देख सुख पावै त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहु मन पीना जियो ज्यों अंधियारै दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोकौ हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै नाम निधान तिस है प्राप्त जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघना जिन हर साध पाया सो नाहे डोलाना।

साहिब भावै सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब बिद जान है ठाकुर के सेवक हर रंग मान है।

जिनी दर्शन पेखा से कर भले जिनी हर जस लेखा से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले हौ बल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारे साध संग खिन माहे उधारे किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो किल विख काट होवा मन निर्मल मिट गए आवन जाना जियो दोए

गुण निदान अमृत हर नामा हर ध्याए ध्याए सुख पाया जियो मनसा धार जो करते आवे साध संग जन्म मरण मिटावे आस मनोरथ पूर्ण होवे पेटत गुरदर साया जियो अगम अगोचर किश्मित नहीं जानी साधक सिद्ध त्याव है ज्ञानी

जियो जल थल पूर रहया मेहरबाना सद बलिहार जाइय कुरबाना रैन दिनस तिस सदा ते आई जे किन मैं सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रव आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नजर निहारे जियो माज महला पंजवा।

अंतर बाहर हर प्रभ साथे। पै पौ परम खोया गुरपूरै, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊच अपारा, नौनिद नाम भरे पंडारा। आद अंत मध प्रभ।

सफल एहा है कारी जियो, दृष्ट धार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, एक सविण होर दूजा।

जाप अलख अपेवा काम क्रोध किलबिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जियो पूर्ण भाग पय जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वस्या।

सो गुर मिल निहचल कहना, प्रेम भगत जिस कै मन लागी, गुण गावे अन दिन नित जागी, बहां पकड़ तिस स्वामी मिले, जिस कै मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय।

मनमुख पाप पचा बनिया एक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुखदाता सब इच्छा आप पूजा बनिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्श हैं दे वड्याई।

सारा मनमुख अंधे सोध ना सारा गुरमुख होवै सो अपना कर राखै पंच दूत शब्द पचावणिया एक गुरमुख सदा सच्चै रंग राते सहजे प्रभ से वह अन दिन माते मिल प्रीतम सच्चे गुण गावहै हर दर सो

गुर कै शब्द आधारा नानक नाम मिले वडियाई दुख सुख सम कर जानणिया माज महला तीजा तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावै सब

मनमुख भरम भुलावणिया। आपे देवै शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले बडियाई, आपे सुन सुन ध्यावणिया। माज महला तीजा, सतगुर साची सिख सुनाई, हर चेतहो अंत हुए सखाई, हर अगम अगोचर।

लेखे विच होवै ओ अगम अगोचर शब्द सुध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोए न कीमत पावणिया पढ़ पढ़ थाके शांत न आई तृष्णा जाले सुध न काई बिख बिहाज है बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी को जाना दूजा मार मन सच समाना।

गुरमते आप बुझावणिया रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेव्या प्रगट होई गुप्त प्रगट।

रहाओ। गुरमुख जीवै मरै परवान, आरजा ना छीजै शब्द पछाण। गुरमुख मरै ना काल ना खाए, गुरमुख सच समावणिया। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच हो आप गवाए। आप तरै कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारणिया। गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर, गुरमुख होमै चूकै पीर। गुरमुख मन निर्मल।

अंधियारा गुरमुख बूझ हर गावणिया अकथो कथिया शब्द सुहावे गुरमति मन सचो पावे सचो सच रव है दिन राती इह मन सच रंगावणिया।

आठ पहर तुद जापे पवना धरती सेवक पायक चरणा खाणी बाणी सर्ब निवासी सबना कै मन पावणिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द सियापै जिन पिया से ही तृप्ता से सच्चे सच अगावणिया तिस कर सह

कौन कर्म कौन निष्कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सन्मुख कौन वे मुखिया, किन विद

गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुभाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया। गुरमुख मिलिया

मैं रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगन न पूहै तिन कौ रंग रत्ते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर न जानणिया।

लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतरह सब वियोग नानक को प्रभ राख।

मैं मर जाती। गुरमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती, सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बिधाती। तू आप सुजान है वट पुरख बिडाती।

विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बाहरों मल मल धोवे अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने होमै विच दुख काले नानक गुरमुख होमै टुटे ता हर हर नाम त्यावे नाम जपे नामो आराधे नामे सुख समावे पवड़ी

मैं बनजारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ कोकिल होवा अंब बसा सहज शब्द विचार सहज सुभाए।

भगत करह मूर्ख आप जनाव है, नच नच टप है बहुत दुख पाव है। नचया टपया भगत ना होए, शब्द मरै भगत पाए जन सोए। भगत वशल

गुरमुख नाम निधान लय दरगाह लय छाए रहाउ लख चौरासी परम दे मन हठ आवै जाए गुर का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ, जो जन त्यावह हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिन सजाए कूरा कच पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

तावत पंच रहे हर त्याया, आन दिन नगरी हर गुण गाया। सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई, तिन कूट त्यागे हर लिव लाई। ते हर दरगाह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावे। कृष्ण बल भदर गुर पग लग प्यावे।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्ते।

पोचार त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं याने तन तन गुरु गुर सतगुर पांधा।

त्यों मन मुख गर्भ गलांढे हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यों हर राख त्यों ठाडे हम भूल चूक गुर के।

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो घर वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया तहरी तिन जम जोहन लागे।

सब सतगुर आगै जिन विछड़िया हर गल लाया मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया सहज आनंद।

पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखे अड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कुह केड़ा शब्द मुख पाया जियो।

इस ग्रह में कोई जागत रहे सावत वस ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती ग्रह अपने की खबर न जाती मुसन हार पंच।

कर कृपा प्रभ अंतर जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी शरणाई नानक नाम मिले वड्याई गौड़ी गुवारे री महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ।

नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा पोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जामन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुण गाए गोपाल मिट है पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप

सुखन होसी सुख दुख कहां दिखायो। खंड ब्रह्मांड का एक कोठाना गुर पर्दा खोल दिखायो। नौनिध नाम निध

सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह ना मानस देह बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे। मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट।

पत पाए। गौड़ी महला पहला, हों मैं करत भेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया। हों हों करत नहीं सच पाइय, हों मैं जाए परम पद पाइय रहाउ। हों मैं कर राज बहुत आवह, हों मैं खपह जन्म मर आवह। हों मैं निवरह गुर शब्द विचार, चंचल मत त्यागै पंच संहार। अंतर साच सहज कर आवह, राजन जान परम गत पावह। सच करनी गुर भरम चुकावै, निर्भउ कै कर ताड़ी लावै। हों हों कर मरना क्या पावै, पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावै।

चालहि गुरमुख हुकम रजाई, रहह अतीत सच्चे शरणाई। सच कर बैसै काल न जो है, मन मुख कौ आवत जावत दुख मोह रहाउ। अपयो पियो अकथ कथ रहियै, निज घर बैस सहज कर लहियै। हर रस माते इहो सुख कहियै।

आत्म सुख तारा इत उतरा खो दीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहाओ। जह देखो तह रव रहे रख राखन हारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा। किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना दियारा। जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा। निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई।

पहला गुर प्रसादी बूझले तौ होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द न

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग ज्यों लाए बहै नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना। बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

गुर कै शब्द पंच संघारे, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोह नत बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई। गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी।

परम पुलहाए, मानमुख अंधे सदा भिख खाए, जम डंड सहे सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, होमे मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिव लाई। गुर मिलिया हम कौ शरीर शुद्ध पई, हौमै तृष्णा सब अग्न बुझई।

मांग है लई हर आपे कृपा करे नाम देवै गुरमुख रतन को बिरला लेवै नानक गुण गावै हर अलख अपेवै।

छड़ विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम

पंजवां अष्टपदियां एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना। जब एहो हुआ सगल की रीना ता तेर मैया कट कट चीना।

गए। जास जपत बस आव है पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचार, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगह सिज्जे।

होए। गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द रिद अंतर तहरै।

दिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदू सगल पसार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सचथाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा

साध संग तरै गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिस है वड्याई।